एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। इस समय सुबह के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में पारंपरिक भजन।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। यह कार्यक्रम का अगला स्वर सुमन कल्याणपुर का। सुनिए पारंपरिक भजन।

0: इसी के साथ श्रोताओं आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आस्था के स्वर।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आस्था के स्वर। यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। अब वक्त है आज के चिंतन का।
2: 21वीं शताब्दी के सभ्य समाज में हो रही हिंसा गहन चिंता का विषय है। विकास के चरम पर पहुंची सभ्यता के युग में आदिकालीन मानव की बर्बरता और पाशविकता निंदनीय है। देश में थोड़ी सी शांति के बाद अचानक हिंसा की बाढ़ आ जाती है। दो अच्छे दोस्त अचानक एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। मानवता की सारी हदें लांघ कर एक दूसरे को नारकीय यातनाएं पहुंचाने को सहर्ष तैयार मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन सी परिस्थितियां मानव मस्तिष्क को संवेदना शून्य कर जाती हैं? परिस्थितियों के विश्लेषण का दौर शुरू होता है और एक उपेक्षित सा शब्द अनायास महत्वपूर्ण हो जाता है और वह शब्द है अहिंसा। दरअसल सामान्य स्थितियों में इसे मानवीय मूल्यों की सूची में स्थान मात्र प्राप्त है। आचरण में इसकी प्रबलता पर हम शायद ज़्यादा जोर नहीं दे पाते। अहिंसा की बात तभी उठती है जब कहीं हिंसा होती है। हिंसा के व्यापक अर्थ को भी हमने संकुचित दायरे में रखा हुआ है और आवश्यकता अनुसार उसे तोड़ मरोड़ कर परिभाषित करते रहते हैं। अहिंसक होना एक प्रवृत्ति है, आचरण है। यदि व्यक्ति में यह भावना विकसित कर दी जाए तो सर्वत्र शांति व्याप्त होगी। अहिंसा शब्द के साथ ही हमें महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी इत्यादि याद आते हैं। उनकी सी

0: और उपदेशों से समाज में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा समस्त जीवधारियों के प्रति बुरी भावना का अभाव है। क्रियाशील रूप में यह सभी जीवधारियों के प्रति अच्छी भावना है, प्रेम है, मानव मात्र का एक दूसरे का सम्मान करना, किसी को कष्ट न देना, किसी के प्रति दुर्भावना न रखना, यह भी एक अहिंसा है। अहिंसक आचरण के विकास के लिए कुछ घटक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावशाली हैं। ये तत्व हैं, पहला सत्य। सत्य और अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग करना प्रायः असंभव है। दूसरा है निर्भयता। निर्भयता का अर्थ है समस्त बाह्य भयों से मुक्ति, अर्थात कष्ट सहने हेतु तैयार रहना। तीसरा तत्व है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य बल का दृढ़ अवलंबन। इसके अनुसार विरोधी को कष्ट न देकर धैर्य और सहानुभूति के साथ उसे गलत मार्ग से हटाना। जब प्रत्येक हृदय में ये भावनाएं बलवती हो जाती है तो समस्त समाज अहिंसक आचरण करेगा। सद्भावना के विकास से ही हिंसा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए बाल्यावस्था से ही प्रयास किए जाने होंगे। राष्ट्र को हिंसा मुक्त बनाने के लिए वर्तमान में अहिंसा का बीज रोपना होगा, ताकि कालांतर में यह पल्लवित और पुष्पित हो सके। नवराष्ट्र के निर्माण हेतु हमें सामूहिक रूप से संकल्पित होना होगा। हमारे द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि, हमारा दृढ़ संकल्प, हमारा आत्मबल, हमारी प्रदीप्त चेतना भविष्य में समाज के ऊर्जायुक्त होनहारों की अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने हेतु एक अच्छा, सुखद, अहिंसक वातावरण प्रदान करेगी।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख निधि गंगेले का और वाचक स्वर उमेश कुलकर्णी का था। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

मंडप में श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थीं, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गईं। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। स्वर श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठेखा था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। आकाशवाणी खंडवा से लीजिए अब सुनिए आज की कृषि चर्चा। वाचक स्वर देवेश मांडले का।
1: किसान भाई नवेन्नोहणी राम राम। आज की कृषि चर्चा खरीफ बुआई पूर्व फसल सुरक्षा कैसे करें, इना विषय पर हम बात करेंगे। वाचक स्वर देवेश मांडले को। भाई बहनोहणी, खरीफ मौसम की बुआई को समय धीरे धीरे नजदीक आई रोज। आसाम में हम इना मौसम की फसल लगाना का पहला कुछ आवश्यक प्रारंभिक तैयारी न जरूर करनी चाहिए, जेकासी हमारी फसल सुरक्षित रह सक, न पैदावार भी हमको अच्छी मिला। न एम हमारा कृषि वैज्ञानिक न अनुभवी किसान भाई न का अनुसार हम ख मुख्य रूप से तीन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो छे खेत की तैयारी, दूसरो छे बीज को चुनाव, न तीसरो होवज बुआई पूर्व बीज उपचार। भाई बहनों की बात करा खरीफ फसल बुआई का पूर्व खेत की तैयारी की, तो हम ख अपना खेत की गहरी जुताई करी ख खेत की मिट्टी को पलटने को काम करना चाहिए। न साथ खेत में पूर्व फसल अवशेष न ख हली बकरी ख खेत से बाहर निकाली ख फेंकनु चाहिए। न गेहूं मक्का फसल का पूर्व अवशेष न ख खेत में ही रोटावेटर न कल्टीवेटर से बारीक करी ख मिट्टी के साथ मिलाई देनु चाहिए, जो कि बाद में खेत की नमी का साथ अवघटित हुई ख एक प्रकार से जैविक खाद को काम करज। भाई बहनों, खेत की जुताई करने से खेत की मिट्टी की परत में सांद्रता बढ़ी जाए, उम हवा को संचार अच्छा से होवज, न वर्षा जल को भी अधिक मात्रा में संचय करने की क्षमता मिट्टी में बढ़ी जाए, न एकासी जमीन में नमी हम अधिक समय तक बनाकर रख सकें, न एक उपयोग हम बाद में हमारी खड़ी फसल ख मिलतो रहे। भाई बहनी, गहरी जुताई से मिट्टी में पाया जाने वाला मित्र कीट न को संरक्षण भी होवज, न शत्रु कीट तेज धूप से नष्ट हो जाए। अब बात करा खेत की मिट्टी से लगने वाला फंगस की समस्या निराकरण की, तो भाई बहनी मिट्टी से लगने वाला फंगस की समस्या का निराकरण कर लेना ट्राइकोडर्मा न सीडोनोमास जैसी रासायनिक दवा का उपयोग हम अपना कृषि वैज्ञानिक न की सलाह के अनुसार कर सकें। बात करा एम ट्राइकोडर्मा का उपयोग की, तो एक खेत की आखिरी जुताई का पहला 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर का 500 किलोग्राम गोबर की खाद का साथ मिलाई कर 8 से 10 दिन तक गीली बोरी का कट्टा नमा ढकी कर रखा। न इना तरीका से तैयार ट्राइकोडर्मा संवर्धन ख

0: खेत की मिट्टी में मिलाना चाहिए। भाई भाई बात करा बीज चुनाव की, तो हम खरीफ मौसम की बुआई का पहला कोई भी फसल लगानो हो, जैसा कि सोयाबीन, मूंग, चवला, मक्का, एका से संबंधित जो भी प्रमाणिक बीज छे ओको हमको चुनाव करना चाहिए, जेमें कि बाजार से खरीदते समय ओका टैग नंबर के साथ बीज की किस्म, ओका पकना की अवधि आदि की जानकारी लिखेल हो, न एको उपयोग हम कितना समय तक कर सकें एक ही जानकारी जरूर लिखेल होना चाहिए। भाई भाई एका साथ है, यदि हम पूर्व फसल का बीज को उपयोग कराएं तो एक भी हमका लगाना का पहला अच्छा से छानी का बीज की ग्रेडिंग अवश्य करा, एक समान आकार का बीज को चुनाव करा जेमे कोई कटेल या टूटेल बीज नहीं हो, एक जरूर देख लेवा। साथ है जो भी बीज को हम उपयोग कराएं वो की अंकुरण क्षमता को मापांकन भी हमका जरूर करना चाहिए ताकि फसल उत्पादन हमका अच्छो मिल सका। भाई बहनी अब बात करा खरीफ फसल लगाना का पहला चयनित बीज का बीज उपचार की, तो हमने जाने कि जब हम बाजार से बीज खरीदान अक्सर वो उपचारित बीज रहे, किंतु फिर भी दुकानदार न हमारा कसी वैज्ञानिक न की सलाह के अनुसार चयनित बीज का उचित रासायनिक दवा को चयन करते हुए वो की उचित मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज का अवश्य रूप से बीज उपचार करना चाहिए ताकि एकासी लगने वाली फसल का कई प्रकार का कीट व्याधि न से हम बचे सकें। भाई उन्होंने सोयाबीन का बीज का फंगिसाइड न कीटनाशक दवा के साथ उचित मात्रा में मिलाकर बीज उपचार जरूर करना चाहिए, जैसो कि फंगिसाइड बीटाबैक्स पावर एक एक किलोग्राम बीज में 2.5 से 3 ग्राम मात्रा का मिलाते हुए उनमें 2 से 3 मिलीलीटर इमिंडा क्लोरोपीड या थायोमेथॉक्साम की 2 ग्राम मात्रा सी जो उपयोग करते हुए प्रति किलोग्राम सोयाबीन का बीज का अच्छा से मिलाते हुए छायादार जगह में फैलाते हुए सुखाना चाहिए, न एको उपयोग 2 से 4 घंटा बाद बुआई में करनो ज्यादा लाभदायक रहे, न एकासी बीज जनित कोई भी रोग लगने की संभावना कम रहे, न बुआई का 30 दिन तक हमारी सोयाबीन की फसल का फंगिसाइड न कीटनाशक से हम सुरक्षित रख सकें। भाई उन्होंने इसी तरीका से फसल सुरक्षा की दृष्टि से मिट्टी परीक्षण कराना भी बहुत जरूरी रहे, तो हम इन्हीं बात को भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आज की कृषि चर्चा में बस इतनोज, राम राम।
1: ये थी आज की कृषि चर्चा, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमती श्वेता शाह की वार्ता जल संचय। साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा आप सुन सकेंगे सुबह 7:21 पर। प्रस्तुति आरती शर्मा की होगी। 8:15 पर आनंद लीजिएगा निमाड़ी लोक गीतों का। 8:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत प्रसारित किया जाएगा। 10:00 हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 10:05 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनों के लिए होगी वार्ता, वर्षा काल में होने वाले रोग उपचार व सावधानियां, वार्ताकार होंगी वर्षा रानी। साथ ही इस कार्यक्रम में बहनें जान सकती हैं घरेलू व्यंजन बनाने की विधियों के बारे में, उपयोगी टिप्स के बारे में और मनोरंजन के लिए होंगे निमाड़ी लोकगीत। 10:40 पर सुनिएगा सुगम संगीत। 9:00 से 10:00 तक और दिन में 11:00 से 5:30 तक राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। 5:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। 6:00 युववाणी कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा क्रम कुछ बातें कुछ गीत। 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 7:21 का समय रहेगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम का।

इसमें हम प्रसारित करेंगे बुरहानपुर की मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित कोर्स के परामर्शदाता मनोज चहल से माधुरी सेन की बातचीत। ये बातचीत केंद्रित होगी मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की जानकारी पर, तो सुनिएगा जरूर।

और रात 8 बजे से रात 11 बजे तक राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आज की ताजा खबर।
1: आज की ताजा खबर में पेश है समाचार पत्रों की सुर्खियां। मध्य प्रदेश रेलवे द्वारा पंढरपुर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नागपुर मिरज नवी अमरावती पंढरपुर भुसावल पंढरपुर में आयोजित आषाढ़ी एकादशी में जाने के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। कौशल विकास विभाग के तहत जिले की 7 आईटीआई में सत्र 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासकीय आईटीआई खंडवा खेड़ी पंधाना में विभिन्न ट्रेंडों की कुल 1480 सीटों का प्रवेश होगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को पोलियो रोधक दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के शहरों में जुलाई से दौड़ेगी पीएम ई बसें, इंदौर से होगी शुरुआत। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, उन्हें गार्जियन ऑफ न्यू होराइजन से सम्मानित किया गया। वहीं श्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया, ऐसा करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री बने। और एक नजर खेल समाचारों पर। वनडे वर्ल्ड चैंपियन भारत और T20 वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड दोनों का सफर महिला T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से हार मिली, जबकि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड ने 9 विकेट से हराया।

प्रतिशत कम बारिश। और एक नजर तापमान पर, खंडवा जिले का दिन का कल का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

श्रोताओं, इस समय सुबह के 7 बजने को है और ये वक्त है हमारे विशेष कार्यक्रम का। आपको बता दें कि आज का विशेष कार्यक्रम आधारित है जल संचय पर, तो सुनिए इस विषय पर श्रीमती श्वेता शाह की वार्ता।

रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नउब्रह मोती मानुष चून। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को श्वेता शाह का नमस्कार। महाकवि रहीमदास जी ने सदियों पहले पानी की महत्ता को इन चंद पंक्तियों में समेट दिया था। आज हम तकनीकी में जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन सच यही है कि पानी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन की नींव है, हमारे कल का आधार है, जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विषय है जल संचयन। मित्रों, कहा गया है जल है तो कल है, पर यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है। हमारे देश में प्राचीन काल से जल को देवता माना गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, आपो ही ष्ठा मयो भुव, अर्थात जल ही जीवनदायी है। हमारे पूर्वजों ने तालाब, कुएं, बावड़ी और जौहर बनाकर जल संचय की अद्भुत परंपरा विकसित की थी। राजस्थान की बावड़ियाँ, गुजरात के वाव और दक्षिण भारत के मंदिरों के तालाब इसके जीवंत उदाहरण हैं। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन ग्लेशियरों में बंद पानी और समुद्र के खारे पानी के कारण मनुष्यों के उपयोग करने योग्य जल बहुत सीमित है। कई शहर और गांव डे जीरो की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार देश के 700 से अधिक जिले भूजल संकट से जूझ रहे हैं। गर्मियों में नलों का सूख जाना, टैंकरों के लिए लंबी कतारें, खेतों में फसल का सूखना आम बात हो गई है। इन सब का कारण कम वर्षा नहीं बल्कि जल का अविवेकपूर्ण उपयोग और संचय के प्रति हमारी उदासीनता भी है। समझने की बात यह है कि जल एक असीमित संसाधन नहीं बल्कि दुर्लभ संपदा है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई के कारण बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता, वह नालियों में बहकर बर्बाद हो जाता है। खेतों में परंपरागत सिंचाई विधियों के कारण भी 60% पानी व्यर्थ चला जाता है। इसी तरह हमारे दैनिक जीवन में पानी के अविवेकपूर्ण उपयोग से होने वाली जल की बर्बादी भी जल संकट का कारण बन जाती है। पर अब सवाल ये है

कि इस बर्बादी को रोकने का समाधान क्या है। वह है जल संचयन, जो कि एकमात्र उपाय है। जल संचय का अर्थ है वर्षा के जल को एकत्र करना और जल का सदुपयोग करना। इसे हम दो स्तर पर कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। हमारे घरों में छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर भी हम जल संचय में अपना योगदान दे सकते हैं। दैनिक उपयोग में बचत, जैसे बाल्टी से नहाना, शावर से नहीं, ब्रश करते समय नल बंद रखना, आरओ से निकलने वाले पानी को पौधों में डालना या पोछा लगाने में उपयोग करना, किचन में सब्जी या फलों के धोने का पानी पौधों में डालना, घरों में नलों की मरम्मत तुरंत करवाना, इन छोटी छोटी आदतों से भी पानी की काफ़ी बचत की जा सकती है। खेतों में भी मेड़बंदी कर ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। गाँवों के साथ साथ शहरों में भी जल संचय के लिए जागरूक

घुटने का पानी पौधों में डालना, घरों में नलों की मरम्मत तुरंत करवाना, इन छोटी छोटी आदतों से भी पानी की काफ़ी बचत की जा सकती है। खेतों में भी मेड़बंदी कर ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। गांवों के साथ साथ शहरों में भी जल संचय के लिए जागरूकता फैलाना चाहिए। अपने बच्चों को पानी का महत्व बताएं। मोहल्ले में नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में चित्रकला, निबंध आदि प्रतियोगिताओं के जरिए संदेश देना चाहिए। याद रखें, आज हम जो आदत डालेंगे कल वही संस्कार बनेंगे। जल संचय का एक और सबसे प्रभावी तरीका है वर्षा जल संचयन, यानी वाटर हार्वेस्टिंग। यह सबसे प्रभावी तरीका है। अपने घर की छत से गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए भूमिगत टैंक या सोखता गड्ढों, मतलब रिचार्ज टैंक में जमा करें, जिससे न केवल पानी की बचत होती है बल्कि भूजल स्तर भी ऊपर उठता है। एक सामान्य घर की छत से साल भर में 50,000 लीटर के लगभग पानी बचाया जा सकता है। यह पानी का बैकअप तैयार करने का सबसे सस्ता और सुरक्षित प्राकृतिक तरीका है। भूजल स्तर बढ़ाने के साथ यह मिट्टी के कटाव को भी रोकता है और भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भी नहीं भरता, जिससे बाढ़ को भी रोका जा सकता है। जल संचयन के प्रयास में अकेले व्यक्ति नहीं, समाज और सरकार की भी भागीदारी आवश्यक है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक पेड़ लगाना भी जल संरक्षण का अप्रत्यक्ष तरीका है, जो वर्षा लाने में सहायक होते हैं और मिट्टी की जल सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान और अमृत सरोवर योजना जैसी पहल चलाकर पुराने तालाबों, बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है व नए जलाशय बनाए जा रहे हैं। मनरेगा, गांव-गांव में चेक डैम और तालाब बनाए जा रहे हैं। कैच द रेन अभियान हर घर, हर स्कूल, ऑफिस में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित कर रहा है। मध्य प्रदेश का जल गंगा संवर्धन अभियान इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां जन भागीदारी से लाखों जल संरचनाएं बनाई गई है। प्रकृति हमें भरपूर जल देती है, जो हमारी ज़रूरत से कहीं अधिक है। कमी जल की नहीं, हमारे प्रबंधन की है। यदि इजराइल जैसा छोटा रेगिस्तानी देश जल संचय से खेती में आत्मनिर्भर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं। अंत में इतना कहना चाहूँगी कि जल को बचाना किसी सरकार या संस्था का काम नहीं, हम सबका धर्म है, हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि आज हमने जल की हर बूंद को सहेजना नहीं सीखा, तो आने वाले समय में हमें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि सभ्यताएं पानी के किनारे बसी थी, और भविष्य गवाह होगा कि पानी की कमी से सभ्यताएं उजाड़ हो जाएंगी। आओ आज हम यह संकल्प करें कि हम पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, जल को प्रदूषित नहीं करेंगे और वर्षा की हर बूंद को धरती के गर्भ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जल है तो जीवन है, जल है तो खुशहाली है। इसी संकल्प के साथ धन्यवाद, नमस्कार।

FM बैंडिक स्वीट 92 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खनवा केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने दिया सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स यात्रा के दौरान भारत ने की 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच और शाजापुर में करेंगे सौर ऊर्जा पार्कों का उद्घाटन। और भारतीय महिला क्रिकेट टी20 टीम विश्व कप से बाहर, और पुरुष टीम आयरलैंड से टी20 सीरीज हारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की सरकार और जनता का धन्यवाद देते हुए यह सम्मान जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों को समर्पित किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार और सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के बीच विक्टोरिया में हुई वार्ता में भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करीब 1593 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया।
1: पानी को लेकर मैंने कुछ निर्णय किए हैं। ग्राम पंचायत कुकरू में राशि 4,14,00,000 की लागत से तालाब का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कसई में तालाब निर्माण का सर्वे उपरांत जो खर्चा लगेगा हम देंगे। ग्राम जामुखेड़ा में रोड निर्माण के लिए 70,00,000, ग्राम लोकल दरी में पुलिया निर्माण 40,00,000, ग्राम कसई भेड़िया कुंड में 85,00,000, ग्राम खामला में बालिका छात्रावास निर्माण 1,20,00,000, मतलब 120,00,000 की ये छात्रावास की मंजूरी दी है।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि

0: ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगेगा और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर दें। योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो, नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजातीय क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और 2 एम्बुलेंस तथा 1 शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देते हुए खरगोन नगर पालिका ने धार्मिक आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। नगर पालिका शहर के मंदिरों से प्रतिदिन फूल एकत्रित करके फूलों की अगरबत्ती बना रही है। इस खास अभियान की और जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
3: शहर के मंदिरों से निकलने वाले फूल अब कचरा नहीं बन रहे बल्कि उन्हीं फूलों से सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जा रही। नगर पालिका ने शहर के 50 से अधिक मंदिरों से प्रतिदिन करीब 5 क्विंटल फूल एकत्रित करने की व्यवस्था की है। इसके लिए विशेष वाहन लगाए गए जो फूलों को संग्रहित कर अगरबत्ती निर्माण केंद्र तक पहुंचाते हैं। तैयार की गई अगरबत्तियों को कुंदा नाम दिया गया है और उन्हें मंदिरों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नगर पालिका का यह नवाचार स्वच्छ भारत अभियान की भावना को मजबूत करते हुए कचरे के पुनः चक्रण और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। अनुकूलनीय पहल को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते।
4: शहर में लगभग 50 से 60 मंदिर हैं, जिनमें कम से कम दिन भर में 5 क्विंटल से अधिक फूल संग्रहण होता है। उनको हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करके हम टेंशन ग्राउंड पे हमारा जो मशीन है रखी हुई है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ सेग्रीगेट करके उसकी सफाई करके पाउडर बनाया जाता है, सुगंधित अगरबत्ती तैयार की जा रही है।
3: खरगोन नगर पालिका की यह पहल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेजेंटेशन के जरिए कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना, समृद्धि केंद्र और कार्डियक एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल झाबुआ जिला चिकित्सालय से बच्चों को पोलियो रोधक दवा की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। झाबुआ जिले में 2,13,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही इंदौर, सागर, नीमच, देवास, जबलपुर, खंडवा और मंदसौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी इस अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की 4 पारंपरिक कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर और क्षत्रिय धान को GI टैग मिल गया है। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि इससे उन उत्पादों को देश विदेश के बाजारों में नई पहचान, कानूनी संरक्षण और बेहतर कीमत मिलेगी। ये चारों उपज मुख्य रूप से डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र महाकौशल के क्षेत्र में उगाई जाती हैं। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। समापन के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। कल हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा और उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों तथा संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब रुख करते हैं खेल का। ICC महिला 20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19

ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बना लिए। वहीं आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को कल T20 सीरीज में हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की 7 शासकीय ITI संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 30 जून है। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पिपलिया मंडी में 1,77,00,000 की लागत से 32 कैश काउंटर दुकानों और ग्राम गुड़बेली छोटी में सड़क का भूमि पूजन किया। डिंडौरी जिले को HPV टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इंदौर में 45 दिवसीय शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का कल समापन किया गया और धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खनवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खनवा।

0: मॉर्निंग खंडवा।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
2: गुड मॉर्निंग खंडवा।
0: गुड मॉर्निंग खंडवा।
3: गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मानसून का आगमन होते ही आसमान ने बादलों की चादर ओढ़ ली है। कहीं तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, तो कहीं रुक रुक कर रिमझिम फुहारों के रूप में बरसते ये मोती मौसम को खुशनुमा बना रहे हैं। तो ऐसे मौसम में ख्वाहिशों में शामिल होती है एक कप बढ़िया सी कड़क चाय और कुछ बेहतरीन नगमे।

0: श्रोताओं, बारिश की बूंदों के साथ ही जहां माटी की सौंधी सौंधी खुशबू दिल में नई उमंग का संचार करती है, तो वहीं ये मौसम तीज त्योहारों के आगमन का संदेश भी ले आता है। आज है वट सावित्री पूर्णिमा व्रत, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए और उनके बेहतर स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से करती हैं। तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं पंडित तुषार दवे से। गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: वट सावित्री पूर्णिमा है, जिसका व्रत सभी महिलाएं, हिंदू महिलाएं, बड़ी ही श्रद्धा से करती हैं। कारण है, क्यों किया जाता है ये व्रत?
1: शास्त्रों की मान्यता के अनुसार यह व्रत सर्वप्रथम सत्यवान की प्राण बचाने के लिए देवी सावित्री ने किया था और इसे वट के झाड़ के नीचे व्रत पूजन करके और ऋतु फल अर्पण करके इस व्रत को किया था। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए और अपने पारिवारिक जनों को आरोग्यता के लिए इस व्रत को करती है।
0: तो महत्व तो आपने बताया, अब विधिवत पूजन विधि क्या अपनाना चाहिए?
1: शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजन को करने के लिए हमें ऋतु का फल और धान्य और वस्त्र का दान करना मान्यता कही गई है। जब प्रातः काल उठे, स्नान करने के पश्चात आप व्रत करने के लिए वल के मतलब बरगद के पेड़ के पास जाएं, वहां पर उसकी जड़ों में जल और थोड़ा सा दूध अर्पण करें और कच्चा सूत और मोली, जिसे हम नाड़ा कहते हैं, उसकी 7 बार परिक्रमा लगाई जाती है। शास्त्रों में सप्त परिक्रमा का विधान इसके लिए कहा गया है कि यह हमारी 7 पीढ़ियों तक रक्षा करने के लिए इसका वर्णन कहा गया है। इसी के साथ में ऋतु फल आम होता है इस समय पर और अखंड सौभाग्यवती को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की गोद में गेहूं और आम दिए जाते हैं।
0: अब आपने ये जो बरगद के वृक्ष के बारे में बताया कि इसका पूजन करना चाहिए, तो बरगद के ही वृक्ष का पूजन क्यों किया जाता है? इसका कोई धार्मिक महत्व है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छुपा हुआ है? इस बारे में थोड़ा हमें बताएं।
1: पुराणों के अनुसार बरगद के वृक्ष के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महेश का वास कहा गया है। इस वृक्ष के जड़ में भगवान ब्रह्मा का स्थान होता है, तने में भगवान विष्णु का स्थान होता है, पत्तियों और शाखाओं के अंदर भगवान शिव का स्थान कहा गया हुआ है। शास्त्र के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव का स्थान होने के कारण ये पूजनीय माना गया है। इस वृक्ष की अगर हम साइंस के अनुसार देखने जाएंगे तो इस वृक्ष की खासियत यह है कि ये 24 घंटे में से कम 20 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसी के कारण इस वृक्ष को शास्त्रों में अमृतत्व का वृक्ष भी कहा गया है। इस वृक्ष के द्वारा कई पशु और पक्षियों का पालन भी होता है। इस वृक्ष की जो छाल और दूध रहती है, वह चर्म रोग के लिए, औषधि के लिए इसका विशेष करके प्रयोग किया जाता है। इसे राष्ट्रीय वृक्ष भी घोषित किया गया है। देखिए, इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं, जिस प्रकार इसकी शाखाएं भूमि के अंदर स्पर्श करती है, वैसे भी इसी में महिलाएं हमारे वंश की वृद्धि के लिए, किसी न किसी वंश के वृद्धि के लिए संतान को प्रदान करती है। इसी के लिए इस वृक्ष की महत्ता ज्यादा है और यहाँ पर शिव का पूजन विशेष करके प्रार्थनीय हो जाता है।
0: श्रोताओं को यदि आप कोई संदेश देना चाहें इस अवसर पर तो जरूर दें।
1: देखिए, मैं तो यह कहूंगा कि सृष्टि के अनुसार हमें त्रिदेव का पूजन हमेशा करते रहना चाहिए और कोई भी व्रत हो या कर्म हो,

श्रोताओं, कहते हैं जब मौसम करवट लेता है तो अक्सर इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है, और स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हो तो हम सीधे पहुंच जाते हैं चिकित्सक के पास। श्रोताओं, एक प्रसिद्ध लोकोक्ति नीति वचन है जिसके अनुसार कहा जाता है कि वैद्य और वकील से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, यानी डॉक्टर हो तो अपनी कोई भी परेशानी आप उनसे ना छुपाएं।

0: अपनी बीमारी से जुड़े सभी लक्षण उनके साथ अवश्य साझा करें। इसी तरह से रामचरितमानस गान में एक दोहा है जिसमें कहा गया है कि सच वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन नीन करें होई बै गही नास। यानी सचे वैद्य और गुरु यदि ये मीठा बोलें तो फिर विनाश निश्चित है। तो इसी कड़ी में चिकित्सक भी मरीज को खुश करने के लिए यदि मीठा बोलें और बीमारी का कड़वा सच ना बताएं तो शरीर का नाश अवश्य है। इसी परंपरा में आजकल प्रचलित जैन जी की धारा में हमारे खंडवा शहर के युवा चिकित्सक जो कि इस परंपरा का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं, जिसमें नाम शामिल है डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव जो कि जिला चिकित्सालय खंडवा में कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो उनसे जानते हैं कि 1 जुलाई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का क्या महत्व है। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आकाशवाणी और गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने श्रोताओं से जुड़ने का अवसर दिया।
0: 1 जुलाई का दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई?
1: भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान चिकित्सक, शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। संयोग से उनका जन्म और निधन दोनों ही 1 जुलाई को हुआ था। इस दिन का उद्देश्य समाज में चिकित्सकों के योगदान को सम्मान देना तथा लोगों को यह बताना है कि डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज ही नहीं करते बल्कि समाज के स्वास्थ्य और कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोविड महामारी के दौरान पूरे देश ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की निस्वार्थ सेवा का बहुत करीब से देखा और महसूस किया।
0: एक चिकित्सक के क्या दायित्व हैं?
1: एक चिकित्सक का पहला दायित्व है कि वह मरीज को सही, सुरक्षित और वैज्ञानिक उपचार प्रदान करे, लेकिन इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है। डॉक्टर को मरीज की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और उसे उसकी बीमारी तथा उपचार के बारे में सरल भाषा में जानकारी देना चाहिए। एक चिकित्सक केवल उपचारकर्ता नहीं बल्कि स्वास्थ्य शिक्षक भी होता है। लोगों को टीकाकरण, स्वच्छता, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तंबाकू और नशे से दूर रहने जैसी बातों के प्रति जागरूक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज के समय में डॉक्टरों की भूमिका केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है बल्कि जन स्वास्थ्य, रोग निवारण और स्वास्थ्य जागरूकता में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बीमारी होने का इंतजार ना करें बल्कि स्वस्थ रहने की आदत अपनाएं। संतुलित भोजन लें, नियमित शारीरिक गतिविधि करें, पर्याप्त नींद लें और तंबाकू, गुटखा, सिगरेट तथा अन्य नशे से दूर रहें। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों की समय समय पर जांच करवाना भी बहुत आवश्यक है। किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। साथ ही अपने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें क्योंकि उनका उद्देश्य सदैव आपकी स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करना होता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी चिकित्सक साथियों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मचारियों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी मिलकर एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में योगदान दें, यही मेरी कामना है।
0: डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ हैं खंडवा शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव अग्रवाल। कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू मैम।
0: आप कब से इस कार्य से जुड़े हैं?
2: मैम, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं किडनी, पथरी, पेशाब एवं प्रोस्टेट रोग संबंधी बीमारियों का इलाज करता हूँ। मैं विगत 7 सालों से खंडवा में सेवारत हूँ।
0: जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 जुलाई को है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो इस संदर्भ में आपके विचार जानना चाहेंगे।
2: राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस डॉक्टर बीसी रॉय की स्मृति में भारत सरकार ने चालू किया था, क्योंकि एक विख्यात डॉक्टर भी थे एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे।
0: एक चिकित्सक के क्या दायित्व है?
2: मैम, सबसे पहले दायित्व तो ये है कि हम लोग

0: बीमारी को जल्दी पहचान पाए, थोड़ा सा लोगों को जागरूक बना पाए।
1: ओके
0: मेरी स्पेशलिटी जैसे कि किडनी एवं पेशाब रोग है, तो उसके लिए आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि पेशाब संबंधी दिक्कत होने के बावजूद भी व्यक्ति डिस्कस करने में थोड़ा सा संकोच फील करता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि मैं किससे ये बीमारी की बातें साझा करूं एवं उसका उपचार मैं किससे ट्रीट करूं, किससे मैं ले पाऊं। तो सबसे पहले मैम अवेयरनेस बढ़ाना हमारा काम रहेगा, बीमारी समझ के फिर उसके लिए सही सलाह देना ही प्राथमिकता है।
1: इस तरह की जो बीमारी है इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं?
0: हम सबसे पहले तो ये कि हमें जो भगवान सिग्नल देता है मतलब शरीर के माध्यम से, उसको अपने को रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको अपने समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। जैसे कि पेशाब में अगर जलन हो रही है, पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि पूरी पेशाब खाली नहीं हुई, अन्यथा पेशाब में खून आ रहा है या कमर में दर्द है, मतलब किडनी या पेशाब संबंधी कोई परेशानी हमें हो सकती है, तो टाइमली डॉक्टर के पास जाके जांचे करवा के उसका अपने को उपचार करना चाहिए। लोगों से शेयर करने में, जैसे अगर पति को प्रॉब्लम है तो वो वाइफ से, फैमिली वालों से डिस्कस करे, महिला को प्रॉब्लम है तो घर में हस्बैंड से या बाकी रिलेटिव से डिस्कस करे एवं संकोच ना करे। तो सबसे पहले बात साझा करने से उसका सॉल्यूशन निकल पाता है एवं समय रहते मदद पाए।
1: श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम संदेश बस यही है कि जागरूक रहे, स्वस्थ रहे, पानी अच्छे से पिए, नमक का सेवन कम करें एवं सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहें
1: जी,
0: एवं शाम का खाना हल्का लें।
1: हमसे अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: श्रोताओं, जब हमारे चिकित्सक हमारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को अपने अनुभव और कुशलता से दूर करने में मददगार साबित होते हैं, तो वही चिकित्सक हमें ईश्वर तुल्य लगते हैं और हमारी आशाएं उनसे जुड़ जाती हैं और हमारा विश्वास उतना ही अधिक हो जाता है जितना ईश्वर में विश्वास। तो हमें उनसे ही आशाएं होती हैं और उन्हीं पर विश्वास हो जाता है।

0: श्रोताओं, 1 जुलाई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन न सिर्फ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है बल्कि इस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी है। तो इसी बारे में हमने चर्चा की खंडवा शहर के जाने माने समाजसेवी और प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री भारत झंवर से।
1: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: आप कब से इस कार्य को कर रहे हैं?
2: मैं 1988 में बॉम्बे से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आया था, तब से मैं खंडवा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ
1: जी। आगामी 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है, क्या उद्देश्य है इसको मनाए जाने का?
2: दरअसल 28 अप्रैल 1949 को भारत की पार्लियामेंट ने, संसद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट को पास किया था।
1: अच्छा।
2: और उसके बाद 1 जुलाई 1949 से ये इफेक्टिव हुआ था। तो चूंकि पार्लियामेंट के द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बनाया गया और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से चालू हुआ, इसी कारण 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया जाता है।
1: सीए की जो भूमिका है देश हित में, देश की इकोनॉमी में, वो क्या होती है, इस पर थोड़ा बताएं।
2: जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, ऐसा कहते हैं ना। तो वास्तविकता यही है कि अर्थ भी हो और उसको मैनेज भी अच्छे से किया जाए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो भूमिका है, अर्थ या पैसा जो आता है वो सरकार के पास किस तरीके से आता है, टैक्स के थ्रू आता है, और जो दूसरे तरीके इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं, एमएसएमई हो गए आजकल, उन सब चीजों के लिए एक ऐसे रेगुलेटरी कोई एक संस्था हो जो इन सब चीजों पर ध्यान दे, संभाले उनको, तो व्यापारियों को, इंडस्ट्रीज को गाइडेंस दे, तो उस काम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और हमारे पूर्व के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण में एक भागीदार है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आरती जी कि अभी हमारे वर्तमान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि हमें बहुत शीघ्र ही $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी तक पहुंचाना है ना। हम भारत जो है वो विश्व का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो जब इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, इसका चक्का चलता है, तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
1: शायद इसी वजह से जो बच्चे अपने करियर का चुनाव कर रहे हैं वो सीए बनना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें भी मार्गदर्शन दें।
2: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो एग्जाम्स होती है वो 3 लेवल पर होती है। आप 10th पास करते ही आप फाउंडेशन कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, और 12th पास होने के बाद आप फाउंडेशन एग्जाम को जैसे आप देते हैं, और आप उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जाम देते हैं,

0: और फिर इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 2 साल की आर्टिकलशिप करते हैं, उसके बाद आप सीए का फाइनल एग्जाम देते हैं, और सीए के फाइनल एग्जाम देने के बाद जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रैक्टिस करें या आप किसी इंडस्ट्री में या बैंक में आप जॉब कर सकते हैं।
1: खंडवा शहर को आपके प्रयासों से एक नई सौगात मिली। इसके के अंतर्गत जो बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आपने रीडिंग रूम की फैसिलिटी शहर में प्रोवाइड करवाई है, तो इस बारे में हमें बताएं कि ये विचार कैसे आया, इसको मूर्त रूप आपने कैसे दिया।
0: खंडवा का जो सीपीई चैप्टर है उन्होंने इस कार्य को किया है। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्या जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और हमारे रीजन का कानपुर में है, तो उनकी एक योजना है कि जहाँ एक निर्धारित जिस संख्या में यदि बच्चे हो जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को जो फॉलो करना चाहते हैं, उस संख्या के आधार पर एक रीडिंग रूम की फैसिलिटी देते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने लगभग 11 लाख रुपए की मदद करके खंडवा में एक रीडिंग रूम बनवाया जो कि एयर कंडीशन है, और अभी वहां पर 50 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है। नाम मात्र का शुल्क लेकर उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ने की सुविधा, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है, पर एक दिन भर एक केयर टेकर व्यक्ति होता है वहां पर। हमारे इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल्स भेजे हुए हैं वो हमारे तीन तीन सेट में अवेलेबल है, फाउंडेशन एग्जाम के, इंटरमीडिएट एग्जाम के, फाइनल एग्जाम्स के। बहुत शांत वातावरण है और उसका फायदा मार्च से ही हमारे बच्चे ले रहे हैं खंडवा शहर के, और अभी भी कुछ बच्चे अभी इसी अभी नया रिजल्ट आया उसमें भी सीए बने हैं, और आने वाले समय में बच्चों को चूंकि घर में कभी कभी एटमोसफियर नहीं मिलता है टीवी के कारण या सोशल मीडिया के कारण, तो उन बच्चों के लिए मैं जरूर आह्वान करना चाहूंगा कि आपको खंडवा में आनंद नगर में एक बहुत ही सुंदर केंद्र मिला है, उसका उपयोग करना चाहिए उन्होंने स्टडी रूम के रूप में। जी,
1: जी, तो इस केंद्र का नाम क्या है ये जानना चाहूंगी।
0: ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रीडिंग रूम खंडवा, जो कि
1: अच्छा
0: प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो आश्रम है खंडवा में
1: जी
0: आनंद नगर में
1: जी
0: उसके एकदम सामने है।
1: बच्चे आकर के संपर्क कर सकते हैं।
0: बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: और
1: मैं समझती हूँ कि इस दिशा में बाकी लोगों को भी प्रयास करना चाहिए।
0: आरती जी कि
1: जी
0: न सिर्फ रीडिंग रूम बल्कि हमारे यहाँ एग्जाम का सेंटर नहीं होता था, पर कोरोना के दौरान जब बच्चे बहुत तकलीफ में आए और उन्हें इंदौर और भोपाल जाने में बहुत तकलीफ हुई, तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर कृषि महाविद्यालय की मदद से खोला गया, और आज उसके बाद करीब 5-6 साल से लगातार ये सेंटर चल रहा है। इससे कई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे बाहर जाना, उन सब
1: जी
0: के लिए यहाँ पर एग्जाम का सेंटर, साल में 3 बार एग्जाम्स होती हैं, उसका सेंटर भी यहाँ पर अब बन गया है। तो उसका भी मैं जरूर विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि जो बच्चे जो स्टूडेंट्स सीए करना चाहते हैं उनको इन सब चीजों की खंडवा में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, रीडिंग रूम की भी है, एग्जाम का सेंटर है, और शायद उसी के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों से नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे शहर में काफी बढ़ गए। विशेष रूप से गर्ल्स स्टूडेंट का मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत गर्ल्स स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही है, हर बार रिजल्ट आता है उसमें 2-3 लड़कियां सीए बनती हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
1: जी, गर्व की बात है, खंडवा शहर के लिए भी गौरव की बात है, और आपके प्रयास भी बड़े ही सराहनीय हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि आप कोई संदेश देना चाहें तो जरूर दें।
0: जी, मैं यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को विशेष रूप से कि ये जो लाइफ का एक टाइम है 12th के बाद, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कोई सा भी प्रोफेशन चुनिए, आपको मेडिकल में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको सीए में जाना है, आपको यूपीएससी क्रैक करना है, पीएससी क्रैक करना है, अपने आप को अनुशासन में रखिए। आप यदि अनुशासन में रहेंगे आप ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये 5 D है लाइफ में, इनका पालन करेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे फिर हमेशा आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छी खुशियां मिलेगी, एक अच्छे देश के नागरिक होंगे, आप अपने परिवार को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कि एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है आपका आकाशवाणी का, उसके माध्यम से अपील करना चाहूंगा युवा साथियों से कि जीवन के इन वर्षों को, इन समय को जाया न करें, और 4-5 साल खूब मेहनत करें, फिर जिंदगी भर आप जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसे जिएंगे, और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी आप कुछ योगदान दे पाएंगे।
1: इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा। कहा भी गया है, मेहनत की आग में जो खुद को जलाते हैं, मेहनत की आग में जो खुद को जलाते हैं, वही लोग एक दिन इतिहास बनाते हैं।

0: और श्रोताओं, अब आज की गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम का सफ़र बस यहीं तक। अब दीजिए इजाज़त आरती शर्मा को। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग खंडवा।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा।
0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा।
3: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
1: आकाशवाणी खंडवा।

FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी

0: यानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि

0: हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
3: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
4: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
5: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की

0: स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खनवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए जीवन लता खेड़े की आवाज में चंद निमाड़ी लोकगीत।

0: निमाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जीवन लता खेड़े और साथियों के गाए कुछ निमाड़ी लोकगीत। आकाशवाणी का ये खनवा केंद्र है। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

ये थी आज की आपकी मीठी गीत कार्यक्रम की पहली पेशकश किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत था एस डी बर्मन का और फिल्म ज्वेल थीफ। इस गीत को हमने कार्यक्रम में शामिल किया आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर। किशोर नगर अमरावती से हीरावन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गोंडानी, मैरिट केंट से दिग्दर्शन और कविता कौर, शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साहिरा सपकाल और विशाल, टाउनशिप भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला चीनू, आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री और इनके परिवार के अन्य सदस्य, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और इनके बहुत से साथी, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और सानिका, पुनावली पुणे से अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवानी, अविका, विशाखा सोनवानी, फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी, नितेश कुमार, तनुजा दिवांगन, इशाद दिवांगन, लखनलाल दिवांगन और सावित्रीबाई दिवांगन ने, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर था ये गीत।

लीजिए सुनिए फिल्म दो कलियां का ये गीत। गीत रचना साहिर लुधियानवी की, संगीत रवि का, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: और श्रोताओं, अब आपको बता दें कि इस गीत को हमने शामिल किया हमारे किन श्रोताओं के अनुरोध पर। ये श्रोता है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अलाबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह और सीथी दीवाना, छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनसर रिहान, खिल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुक्कू, भाविका सिक्का, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडानी, अर्चना गुंडानी, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शिंदे, मां नर्मदा नगर ओमकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, सपना सेन, ओम द्वारिकाबाई सेन, गिरधारी लाल चौधरी और मनीषाबाई चौधरी, पालता नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी, नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल और सिया, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल साथी निशा, भवानी नगर पैठन से आरती, अरुण धुमाड़े और भाऊ साहब धुमड़े, माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता कटारे, उदय कटारे, उज्ज्वल और मितांश, राम जामली कला से मानक चंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, प्रियांशी और दिव्यांश राठौर, छिगांव देवी से अशोक वाघी, वंदना वाघी और कान्हा वाघी, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक। तो आप सभी श्रोताओं की अनुरोध पर था ये गीत।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: आपकी मीति गीत कार्यक्रम की अगली पेशकश, आज की अगली पेशकश आप सभी श्रोताओं के प्यार भरे अनुरोध पर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

जाफराबाद से सुधाकर राजी जाधव, प्रशांत जाधव, सचिन, संचित और प्रथमेश, अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, सुभाष खंडाली, दीपक फूलमाली और समर फूलमाली, शेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश मुहाल, मोहम्मद जुनैद, रियाज और इनके बहुत से साथी, राम मंदिर चौक ग्राम जामली कला से शब्बीर मंसूरी, साबिर फैजल, सोहेल शाहबाज और सिफोन मंसूरी, दादाजी रिनी वाले मार्ग खंडवा से मोहम्मद हसनैन, हसु बाबा, मोइन छोटू और मोहम्मद फासिल और इनके बहुत से साथी, जामा मस्जिद रोड भिकन गांव से साफिया अरहान खोकर, अनस शिफा खोकर, मजनू का टीला से कमल बालूचा, मधु बालूचा और सागर बालूचा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और हसनैन पवार, ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़ी, वनीता गंगराड़ी और वामिका गंगराड़ी, नागपुर महाराष्ट्र से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव, बड़ाबम चौक खंडवा से संजय मारकंडे, संजीता मारकंडे और बीबी किट्टू, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और इनके साथी, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर पेश है आज के कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत रचना शैलेंद्र की, संगीत है एसडी बर्मन का और फिल्म है गाइड।

0: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
1: कौन सा काम?
0: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
0: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
1: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
0: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
1: रोज सुनती हो तो उस पे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
0: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
1: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
0: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूं।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
1: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
0: अभी।
2: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। अब कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश का गीत। बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, ईशान सैनी और कार्तिक सैनी, खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बैस, रिया रोहन, अंगद ठाकुर, लिवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, सनावद ग्राम खंगवाड़ा से दगड़ूजी सेन, धर्मेंद्र सेन, राम सेन, कलाबाई, सावित्री, निशा, आयुष और दीपांशु सेन, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और श्रीमती शीतल राजेश, सहारनपुर से इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है सैयद मसूर, शाइन हसन और नाजिया साथी इब्राहिम ने, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय, निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, बिकनगांव से संतोष सातली, सारिका, रोहित, शुभम, देवी किशन, शैलेंद्र, कंचन और चंदन सातली, बुल्ढाना महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध और साधना साथी पवन पाटिल, पाकुट झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। इसी गीत की फरमाइश में भेजी बोहड़ा बांची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या।

वांगनी, कुरावली सी अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निखत और शाहनवाज अब्बासी ने, भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश और मुरली क्षत्रिय ने, जमशेदपुर से हरजिंदर और एंजल ने, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजिए।

0: श्रोताओं आपको बता दें कि इस गीत की फरमाइश हमें भेजी इन श्रोताओं ने भी, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत और मिथिल नाचानी, रमजा खोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश, दीपक और पूजा खटक, छत्तीसगढ़ राजनांद गांव से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, समीक्षा और आराध्या साहू, वंदना नगर एयरपोर्ट रोड इंदौर से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति, परी, ललिता खर्चे, गणेश और नारायण भाव खर्चे, निम्बोरा महाराष्ट्र से बबन राव जोशी, हेमंत जोशी, मनीषा और करिश्माताई, साथ ही अशोक देशमुख, मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकार, सुनील, साहिल और सुझाता, और दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आप सभी श्रोताओं ने भी इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी। इसी के साथ अब आज के आपके मीती गीत कार्यक्रम को देते हैं यहीं विराम। इजाजत दीजिए अपनी रेडियो सखी आरती शर्मा को। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।

0: के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ फिल्म का गाना देव नेगी की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो

सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाजों में हंसी तो फंसी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं अजहर फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज में। रश्मि विराग का लिखा गीत है और अमाल मलिक का संगीत।

डियर जिंदगी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह का गाया हुआ। कौसर मुनीर के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और लीजिए अब सुनिए लैला मजनू फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल का लिखा गीत, जिसे संगीत से संवारा है नीलाद्री कुमार ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं, और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात ये थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक पर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच्चा

फूलों से। तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे, उनके जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले, इन्होंने गाया आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊँगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज

एफएमबैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खनवा केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज कुमार शुक्ल का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। अशोकनगर

की चिट्ठी में सबसे पहले बात प्रशासन और सहकारिता की। जिले में बीते दिनों राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के नवनियुक्त प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली तहसील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता, ऊर्जा संरक्षण, सदस्यता महाअभियान और हरित सहकार अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और तय समय पर लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को बेहतर बिजली सेवाएं देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर बिजली समाधान शिविर लगाए। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर भी जिले में लगातार गतिविधियां चल रही हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर साकेत मालवीय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तुलसी सरोवर तालाब में श्रमदान कर साफ सफाई की। वहीं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से बावड़ी उत्सव का आयोजन किया। अब बात करते हैं जिले की ऐतिहासिक धरोहरों की। अशोकनगर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए जिला पुरातत्व और पर्यटन तथा संस्कृति परिषद की ओर से पर्यटन मित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन मित्रों के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। विश्वख्यात चंदेरी साड़ी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब प्रत्येक चंदेरी साड़ी पर GI टैग लगाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि चंदेरी साड़ियों के संरक्षण और बेहतर विपणन के लिए हैंडलूम पार्क के नाम से एक समर्पित वेबसाइट तैयार की जाएगी और MPIDC को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जिले में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि उपसंचालक अमित भदौरिया ने बताया कि इस वर्ष 3,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक 1,78,000 हेक्टेयर में मक्का, 65,000 हेक्टेयर में सोयाबीन और 9,000 हेक्टेयर में मूंग तथा 2,500 हेक्टेयर में उड़द की बुआई की जाएगी। समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भी जिले में विशेष अभियान चलाया गया। बीते दिनों नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी उत्साह के साथ मनाया गया। अशोकनगर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो इस योजना के तहत जिले के हजारों हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के हितग्राहियों के खातों में कुल 1,49,22,000 रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर की। श्रद्धेय जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज के संबंध में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित किए जाने के मामले में जैन समाज ने ज्ञापन सौंपा था। समाज की सूचना पर थाना कोतवाली अशोकनगर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से जिले में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। ये कोच एथलेटिक्स में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ साथ आर्मी और MP पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने वाले युवक युवतियों को निशुल्क प्रशिक्षण देंगे। सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों की जमीन के सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का समय पर निराकरण करने, CM हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान देने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। अशोकनगर जिले से होकर गुजरने वाली बीना गुना रुठियाई पैसेंजर ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। बीते दिनों क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बीना के लिए रवाना किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 6 बच्चों का उपचार कराया जाएगा। इन बच्चों को सर्जरी के लिए मुंबई के प्रसिद्ध नारायणा हॉस्पिटल के हेल्थ SRCC भेजा गया है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इन बच्चों का इलाज किया जाएगा। और अंत में बात जागरूकता अभियान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय सबके लिए अभियान के तहत ग्राम सीहोर में बीते दिनों आदिवासी समुदाय के बीच विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में वन अधिकार अधिनियम 2006, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों के लिए उनका कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आज आपका साथ छे आपकी बहन विशाखा। सबई बहन नकमहारी राम राम। बहन होनी आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की तिथि छे। हिंदू पंचांग का अनुसार पूर्णिमा की तिथि बहुत पवित्र मानी जाए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन सभी सुहागन स्त्री न पति की लंबी उम्र अच्छा स्वास्थ्य का लेन न सुख समृद्धि का लेन व्रत रखज न वट वृक्ष की पूजा करज। पौराणिक मान्यता का अनुसार देवी सावित्री न अपना पति सत्यवान का प्राण यमराज से वापस लेने का लेन कठोर तपस्या करी थी। न अपनी तपस्या का बल पर सावित्री न अपना पति

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आज आपका साथ छे आपकी बहन विशाखा। सबई बहन नकमहारी राम राम। बहन होनी आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की तिथि छे। हिंदू पंचांग का अनुसार पूर्णिमा की तिथि बहुत पवित्र मानी जाए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन सबई सुहागन स्त्री न पति की लंबी उम्र अच्छा स्वास्थ्य का लेन न सुख समृद्धि का लेन व्रत रखज न वट वृक्ष की पूजा करज। पौराणिक मान्यता ना का अनुसार देवी सावित्री न अपना पति सत्यवान का प्राण यमराज से वापस लेन का लेन कठोर तपस्या करी थी। न अपनी तपस्या का बल पर सावित्री न अपना पति सत्यवान का प्राण यमराज से वापिस लिया। ये कथा हम कई सिखाड़ कि सच्ची निष्ठा न प्रेम सी हर स्त्री अपना जीवन में आने वाला हर संकट सी लड़ी सकज। बहन होनी वड़ को पेड़ त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु न महेश को प्रतीक मान्यो जायज। बड़ की जड़ में ब्रह्मा जी तना में विष्णु जी आना ऊपरी भाग में शिव जी को वास रहेज। आयुर्वेद में भी बरगद का पेड़ को बड़ो महत्व छे। एकासी बड़ का पेड़ का शक्तिशाली न कायाकल्प करने वाली जड़ी बूटी न मान्यो गयो। एक छाल सी अन पत्ती न सी दूध सी औषधि न तैयार करी जाए। बड़ को पेड़ घनो रहे न ये कई साल तक जीवित रहे। पर्यावरण की दृष्टि से भी बड़ का पेड़ को बहुत ज़्यादा महत्व छे, क्योंकि जी पेड़ जितो घनो रहे वो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन मुक्त करे, तो ये हमारा पर्यावरण का लेना भी बहुत अच्छो मान्यो जाए। बहन होनी हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति न पर आधारित छे। पेड़ पौधा हमारा पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग छे। एकालेन हम पेड़ पौधा ने की पूजा कराएं। आज पेड़ पौधा लगाणु आरो भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गयो, क्योंकि हम न अपना स्वार्थ का लेन जंगल न काटता चली गया, जेका से पृथ्वी का तापमान में साल दर साल वृद्धि होती जा रही, जमीन को जल स्तर बहुत नीचे चली गयो। बहन होनी आपसी बातचीत तो हम आगे आरो भी करांगा, पर अभी हम सुने लेवान इनी माड़ी लोकगीत जिख गायो बहन हेमलता उपाध्याय ना।

बैन होनी अभी हमने सुनियो बैन हेमलता उपाध्याय को गायो ये वर्षा गीत आपका जरूर पसंद आया होगा। बैन होनी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की तिथि का संत कबीर जयंती भी मनाई जाए। संत कबीर को जन्म 1300 विक्रम संवत 1398 में काशी में हुआ था। कबीरदास जी 15वीं सदी का महान रहस्यवादी कवि समाज सुधारक नव संत था। उन्ह अपना दोहा का माध्यम से उस समय का समाज में फैली कुरीति न अंधविश्वास न धार्मिक कट्टरता को कड़ो विरोध करो। कबीरदास जी का दोहा आडंबर नख छोड़ी कर सरल मन से सच्चा गुरु का अनुसरण करना न स्वयं का भीतर परमात्मा का खोजना को संदेश देज। गुरु की अहम भूमिका रहे ईश्वर का साक्षात्कार में आध्यात्मिक मार्ग में मैं यानी अहंकार सबसे बड़ी बाधा छे। कबीरदास जी ने ज्ञान न भक्ति को प्रेम ज्ञान न भक्ति का प्रेम को आधार बनाने जीवन पर दया रखनू सबसे प्रेम करनू ईश्वर का प्रति पूर्ण रूप से हमेशा समर्पित रहनू जेकासी जीवन का कष्ट स्वतः समाप्त हो जाए। ईश्वर का केवल दुख में नहीं बल्कि सुख में भी याद करनू चाहिए क्योंकि यदि हम प्रभु का सुख में याद करांगा स्मरण करांगा तो हम उनका आशीर्वाद से कठिन परिस्थिति न में भी डगमगावांगा नहीं। बैन होनी कबीरदास जी एक फक्कर संत था। सादो जीवन न उच्च विचार उनको प्रमुख गुण थो। उनका अनुसार आवश्यकता से अधिक धन संचय करना से हमारो दुख बढ़ी जाए क्योंकि मनुष्य की इच्छा न जो छे असीमित छे। उका पास अगर एक चीज आई जाए तो दूसरी की लालसा उका मन में बनी रहे। एकाले हमेशा संतोषी जीवन जीना सी मनुष्य का सुख न शांति भी मिले। खोखला दिखावा न सी बचा। ईश्वर की नजर में सबै मनुष्य समान छे। अपना जीवन में श्रम न ईमानदारी सी जीवा अपनी भाषा का संयत रखा जेका सी अपनी वाणी सी किसी दूसरा का कोई भी कष्ट नहीं होए। बैन होनी कबीरदास जी का इस उपदेश नख हमका अपना जीवन में उतारनू चाहिए। अपना बच्चा नख भी हम असी सीख देवा उन खबी हमें

0: अपेक्षा सादा न सरल बनावा। बहन होनी ये तो थी आपकी न हमारी थोड़ी सी बातचीत। अब जैसो कि वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई गई, वर्षा ऋतु यूं तो हम सबका लेना एक वरदान छे, पर ऋतु परिवर्तन को असर हमारा स्वास्थ्य पर तो पड़े जाए। वर्षा काल में कौन कौन सी बीमारी न हुई सके, न किस तरह से हम इनका से बची सकें, इनाज संदर्भ में विस्तार से जानकारी देने का लेना हमारा साथ उपस्थित छे जिला अस्पताल में आयुष विभाग में कार्यरत जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर वर्षा रानी वैश्य। तो आओ सुनाइए वार्ता।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। इस ऋतु में मौसम में परिवर्तन होने लगता है। ग्रीष्म ऋतु से धरती की तपन को वर्षा ऋतु के बौछारें धीरे धीरे कम करने लगती हैं। इस कारण इस ऋतु में अचानक आने वाली आर्द्रता, उमस या नमी के कारण बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। ये बीमारियां ज़्यादातर जो है वो दूषित जल, वायु या एक दूसरे के संपर्क से होती हैं, और इन्हें ही हम संक्रामक बीमारियां कहते हैं। ये संक्रामक बीमारियां ज़्यादातर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट्स के द्वारा फैलती हैं, क्योंकि ये मौसम जो होता है इनके अनुकूल होता है। कुछ बीमारियां हवा से फैलती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, फ्लू। कुछ बीमारियां दूषित भोजन या पानी से फैलती हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पीलिया। कुछ मच्छर या अन्य कीटों के द्वारा काटने से होती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। फिर साफ़ सफाई ना रखें या पहले से किसी को चमड़ी की बीमारियां होती हैं तो उनसे खुजली होना और त्वचा संबंधित अन्य बीमारियां होना, ये सब इस मौसम में ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और बीमारी भी होती हैं, जैसे उल्टी, दस्त, जो कि अपच वगैरह के कारण होता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बारिश में धीरे धीरे वातावरण में आर्द्रता होने लगती है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होने के कारण ज़्यादातर बीमारियां इस ऋतु में होती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है, सर्दी खांसी बुखार है, सिर में दर्द है, पुरानी चोटों में अचानक से दर्द हो, ये सब बीमारियां ज़्यादातर होती हैं। फिर हमारी इस समय पाचक अग्नि जो होती है, हमारी पाचन क्षमता जो होती है वो बहुत धीमी हो जाती है, तो इस कारण क्या होता है, बार बार अपच होना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, ये सब समस्याएँ भी होती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए सामान्यतः हम जो है सामान्य उपचार हम कर सकते हैं। सामान्यतः सर्दी खांसी बुखार हो तो हम तुलसी या काली मिर्च का काढ़ा या तुलसी और अदरक का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें कि हम काढ़ा नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें हम अदरक और शहद को मिक्स करके समान रूप में उन्हें हम चाटने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकटू चूर्ण आदि को भी हम शहद के साथ चाटने के लिए दे सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण हम तब देते हैं जब सर्दी हमें अंदर जमी हुई रहती है, तो उसे शहद के साथ देने से बहुत फ़ायदा होता है। इसी प्रकार सामान्य बुखार हो या वायरल फीवर या हल्का बुखार हो तो हम त्रिकटू पाउडर को जो शहद के साथ आधे से एक चम्मच चाय के चम्मच से के बराबर दे सकते हैं। छोटा बच्चा हो तो हम उसे बिल्कुल एक दो चुटकी पाउडर को हम शहद से चटा सकते हैं। इसके अलावा शरीर में गिलोय घनवट्टी, बुखार के लिए गिलोय घनवट्टी दे सकते हैं, गिलोय चूर्ण दे सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो हम वायरल फीवर में या हल्के फुल्के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा हल्दी और अदरक को दूध में उबाल के दिया जा सकता है, जो कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस मौसम में गिलोय, आंवला, नीम या च्यवनप्राश हम खाने के लिए दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं वो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। अश्वगंधा पाउडर है, शतावरी पाउडर है। इसके अलावा यदि हम देखें कि छोटे बच्चे हैं या बड़े, किसी को अपच हो गया है, पेट दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, तो हम उसमें हींग को जो है थोड़ा सा घी लेकर उसमें भून कर खिला सकते हैं, या हींग को थोड़ा सा आग में भून कर उसको निगलवा सकते हैं यदि बड़ा कोई व्यक्ति हो तो। इसके अलावा जो है हींग को हम पानी में, उसका गुनगुने पानी में लेप बना के नाभि के आसपास लगा सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें गैस वगैरह बनती है, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। फिर हम अजवान और सौंफ का पाउडर लेकर सामान्य मात्रा में उसको दे सकते हैं खाने के बाद, चबा चबा के खा सकते हैं या पाउडर बना के उसको खा सकते हैं। छोटे बच्चे हों तो उन्हें टंकण भस्म या शंख भस्म को शहद के साथ चटवाते हैं, ये भी बहुत जल्दी फ़ायदा होता है और इससे छोटे बच्चों को देने में आसानी रहती है। फिर यदि इस मौसम में पतले दस्त हो रहे हों और तो हम क्या कर सकते हैं, तो बेल का चूर्ण दे सकते हैं, कुटच का चूर्ण दे सकते हैं, बेल का मुरब्बा।

यदि मरोड़ के साथ दस्त लग रहे हैं तो बेल का मुरब्बा दिया जा सकता है, अनार का रस दिया जा सकता है, अनार के छिलकों का यदि हम क्रश कर लें उसको मिक्सर में और उसको 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब यदि हम उसको पीने के लिए देते हैं तो इससे दस्त में बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा यदि ज़्यादा उल्टी दस्त हो तो शरीर में पानी की कमी ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए, और हमें फिर तुरंत चिकित्सक को भी दिखाना चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को जो है वो घरेलू उपचार पे नहीं रख सकते हैं। सर्दी खांसी हो सामान्य रूप से तो हम गुनगुना पानी पीने को दे सकते हैं, गुनगुने पानी से हम गरारे करने को कह सकते हैं, छोटा बच्चा हो तो हम भाप दे सकते हैं। त्वचा संबंधित कोई परेशानी हो या कोई संक्रमण हो तो हमें साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हम पेशेंट को कहते हैं कि अपना तौलिया साबुन अलग रखें, अपने कपड़े अलग धोएं ताकि ये इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले। इसके अलावा नीम के पानी से नहाना या नीम का तेल लगाना या करंज का तेल, मरीची आदि तेल, ये सब चीज़ें भी हम उपयोग करवाते हैं पेशेंट को। यदि उसे सूखी प्रकार की कोई खुजली हो तो, गीली प्रकार की खुजली हो तो इन सबको चूर्ण के रूप में हम लगवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या यदि गंभीर हो, गंभीर लक्षण हमें किसी भी बीमारी में दिखे तो हमें ज़रूर चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए क्योंकि ये उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए हमें जो है कुछ सावधानियां भी रखना चाहिए, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। बाहर से आए हम तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए, तुरंत यदि शरीर गीला हो गया है या गीले कपड़े हैं तो उसे तुरंत बदलना चाहिए, सिर गीला हो तो उसे तुरंत पोंछ लेना चाहिए, सर में नमी नहीं रहना चाहिए, इससे सर्दी खांसी बुखार हो सकता है। इसके बाद में हमें स्वच्छ शुद्ध साफ पानी पीना चाहिए। यदि पानी इस मौसम में जैसे हम देखते हैं कि गंदा पानी आ रहा है तो पानी को फिटकरी डाल के रखें, उसे छान लें और फिर उबाल कर पीना चाहिए। खाना हमेशा जो है वो ढक कर रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें संक्रमण ना हो या कोई कीड़ा वगैरह ना गिरे इसका ध्यान रखें। बाहर की चीज़ें खाने से बचें, इस मौसम में बाहर की चीज़ें लोग ज़्यादातर शौक से खाते हैं परंतु नहीं खाना चाहिए क्योंकि नमी होने के कारण वहाँ फंगल इन्फेक्शन या फंगस लगने का डर ज़्यादा रहता है, हमें बचना चाहिए। इसके अलावा क्या खाना पीना चाहिए तो इसमें सब में ताज़ा सुपाच्य गर्म भोज्य पदार्थ लेना चाहिए, मूंग की दाल, दलिया, खिचड़ी, पुराना अनाज, मौसमी फल लेना चाहिए, अनार, सेब या जो भी सब्जियां इस मौसम में हमें ताज़ी मिले वो लेना चाहिए। इसके अलावा शहद, गुनगुने पानी का उपयोग करना चाहिए, जूस या सूप का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारी दिनचर्या वगैरह कैसी होना चाहिए तो दिनचर्या को देखें तो सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर हमारे वात पित्त कफ ये जो दोष होते हैं वो संतुलित होते हैं। जल्दी सोना चाहिए ताकि हमारे शरीर को जो है थकान ना हो, पर्याप्त हमारे शरीर की नींद हो। इसके बाद में बारिश में हमें ठंड से बचना चाहिए, नमी से बचना चाहिए, शरीर को जो है मोटे कपड़े पहनने चाहिए ताकि शरीर में हवा का सीधा संपर्क ना हो। प्रातः काल सैर पे जाना चाहिए, लेकिन जैसे यदि बारिश है हम बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही हम योग और प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। योग में हम क्या कर सकते हैं तो ताड़ासन है, वृक्षासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, त्रिकोणासन आदि आसन कर सकते हैं। खाने के बाद वज्रासन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ध्यान, योग, अनुलोम विलोम, प्राणायाम ये सब किया जा सकता है। इसके अलावा हम शरीर के विजाती तत्वों को बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं तो जैसे कि शरीर में तेल की मालिश कर सकते हैं। तेल की मालिश के लिए हम सरसों का तेल या तिल्ली के तेल को अच्छे से गर्म करके रख लें और जब भी उपयोग करें तो हल्का गुनगुना करें उसे, और शरीर में तेल लगा के उसको अच्छे से हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए। सर में तेल लगा के हल्के हाथों से मालिश करें। उसके बाद में यदि किसी प्रकार की समस्या नाक में या कान में ना हो तो दो दो बूंद नाक और कान में तेल डाला जा सकता है। तेल डालने से हमारे सभी इंद्रियाँ जो है वो मजबूत होती हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर जो है हमारा बल शरीर में आता है ओ जाता है, हमारे शरीर की त्वचा जो है वो मुलायम होती है, स्निग्ध बनती है, उसमें चमक आती है और किसी भी प्रकार के त्वचा में इन्फेक्शन होने से बचाव होता है। इसके बाद हम शरीर में पसीना लाने के लिए गर्म पानी से नहा सकते हैं। शरीर में हम जो है गर्म कपड़ों को ओढ़ के रख सकते हैं। योग वगैरह करते हैं तो उससे भी शरीर में पसीना आता है। पसीना आने से हमारे शरीर के जो विषाक्त तत्व है वो पसीने के जरिए बाहर निकल जाते हैं, तो ये भी एक तरीके से हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है।

0: बाद में फिर हम नस से हमने बता दिया नाक में तेल डाल सकते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी क्रियाएं जो है रात को सोते समय पैर के तलवों में तेल लगा के सोएं, जिससे कि हमारे पैरों की थकान तो दूर होती ही होती है लेकिन ये हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। अब ये सब तो हमारे दिनचर्या ऋतुचर्या या हमारे दैनिक जीवन में हम जो छोटी छोटी चीज़ें वो कर सकते हैं। यदि हम देखें कि अब इस मौसम में हम और क्या कर सकते हैं संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यदि आप ये सब दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो बहुत हद तक जो है वो सामान्य रूप से होने वाली सर्दी खांसी या संक्रामक बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। धन्यवाद।
1: भाई नहोनी, अभी हम सुनी रहा था वार्ता वर्षा काल में होने वाले रोग उपचार व सावधानियां। आना जानकारी दे रही थी डॉक्टर वर्षा रानी वैश्य। न आवा हम सुनी लेवान बैन स्नेहलता भटोरे को गायो इनिमाड़ी लोकगीत।

बैन होनी अभी हमने सुनो बैन स्नेहलता भटोरी को गायो इन्हें मारी लोकगीत ना अब बारी छे व्यंजन की। तो आज हम आपका बनाउनो बताई रहा आटा बेसन की मुठिया का लड्डू। तो एक आमा हमको चाहिए एक कटोरी आटो एक कटोरी बेसन। आटो बेसन बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ो दुरमुरो होना चाहिए। तो अब आटा और बेसन हमने लियो तो इनका अच्छी तरह से मिला लेवा। जिका बाद एक हम घी को मोयन डाला। घी को मोयन हम उतनो डाला कि हाथ से ओखा दबाना पर मुठिया बनी जाए। मोयन डालने का बाद एक अच्छी तरह से मिला लेवा। मिलाने का बाद पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार दूध डाली का ना एक हम मसी लेवा। मसने का बाद छोटी छोटी मुठिया ना तैयार कर लेवा। आटा और बेसन की मुठिया बनाने का लेना आटो एकदम कड़क होना चाहिए। गीला आटा की मुठिया ना नरम पड़ी जाए ना अंदर कच्चोपन रह जाए। अब जब मुठिया ना हमने तैयार कर ली तो कढ़ाई में घी डाला। घी गर्म होने पर मुठिया ना का धीमी धीमी आँच पर तली लेवा सुनहरी होने तक। एकदम धीमी आँच पर तलनु, तेज आँच में तलांगा तो मुठिया ना अंदर से कच्ची रह जाएगा न ऊपर से जली जाएगा। अब ये मुठिया ना तली गई तो इनका छोटा छोटा टुकड़ा करी लेवा और ठंडी होना देवा। जब ये ठंडी हुई जाए तो इनका मिक्सर में पीसी लेवा। अब जितनी मात्रा में हमारा पास ये मिक्सचर छे उतनी मात्रा में हमका शक्कर भी लेनु, शक्कर कभी पीसी लेवा। अगर आप ज़्यादा मीठो पसंद करता हो तो अपना स्वाद का अनुसार शक्कर ज़्यादा या कम करी सको। अगर कम मीठो खाता है तो शक्कर कम लो। इस तरह से हमका ये जो पीसेल हमारो मिक्सचर छे एका में हमका पीसी हुई शक्कर मिले लेनो। फिर एका में आवश्यकता अनुसार घी गर्म करी कर डाला और जो भी सूखा मेवा आपका डाल लो, काजू बादाम पिस्ता जो भी डाल लो वो डाली सको, खोपरू या खसखस आप का पास जो भी उपलब्ध हो आप इनका बारीक बारीक काटी कना घी में भुनी कना काम मिले लो। साथ है स्वाद का लेन पीसी हुई इलायची मिले लो और अच्छी तरह से मिक्स करने का बाद छोटा छोटा लड्डू बना लो। ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे, आप भी इनका बनाई करना जरूर देख जो। न बहन होनी अब बारी छे टिप्स की। बहन होनी रसोई में जब भी हम जावाएं तो हमारे पास बहुत सारा काम रहे और भाग दौड़ भरी जिंदगी हमारी बहन की तो छे जज। तो रसोई का काम न का आसान बनाने का लिए जब भी आप सब्जी बनाना जाए रहा तो एक टास्क करे लहसुन छिलनु। लहसुन छिलने का लेना हमको कई करना चाहिए कि झटपट लहसुन हम छिले लेवा तो एक थोड़ी देर का लेना गुनगुना पानी में डाल दें तो लहसुन का छिलका आराम से निकली जाएगा तो आपकी सब्जी की तैयारी झटपट हो जाएगा। अब बहन होनी बारी छे घरेलू नुस्खा की। चेहरा पर मुहासा या काला घेरा होए तो खीरा को रस निकाली कर ना उका में थोड़ो सो बेसन डाली कर ना एक चेहरा पर लेप लगावा। थोड़ी देर का लिए रखा ना फिर गुनगुना पानी से चेहरा का धो लेवा। तो चेहरा पर जो भी काला घेरा या मुहासा होएगा तो वो नहीं होना का। बैन होनी अब हम सुनी लेवा एक अरुणिमाड़ी लोग की जिख गायो बैन जीवन लता खेड़े ना।

बहनोनी अभी हमने सुनो बहन जीवन लता खेड़ी को गायो इनिमाड़ी लोकगीत एक साथ है अपना कार्यक्रम को समय यहाँ जी पूरो हीरोज आपके बहन विशाखा का आज्ञा देव राम राम।

अभी ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी का ये खनवा केंद्र है। सुबह के 10:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

0: महाराज जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
1: कौन सा काम?
0: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
0: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
1: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
0: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
1: रोज सुनती हो तो उस पे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
0: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
1: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
0: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूँ।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
1: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
0: अभी।
2: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में चंद सुगम संगीत रचनाएं।
1: बड़े अच्छे लगते हैं।
2: क्या

0: आकाशवाणी खंडवा, सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शंकर महादेवन की आवाज में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को आप सुन रहे थे अदिति सिंह शर्मा और दिव्य कुमार की आवाजों में। सूफी जॉय एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से गजल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानुलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे। जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में तुम बिन टू फिल्म से इसे हमने लिया, अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में ये अगला गीत।

तलत अज़ीज़ की आवाज़ में आप सुन रहे थे कतील शिफाई का ये कलाम, और तलत अज़ीज़ ने ही संगीत से सजाए गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एंड गज़ल्स इस एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीता फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। नीचे सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है।

0: प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमरीका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आरोप फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल सपन जगमोहन के संगीत के साथ, अभी तो जी लें। इस फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी तो जीलें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor? ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन। और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिमान फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: आँखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आँखियों के झरोखों से इस फिल्म से गीत आपने सुना, हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: दौलत वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
2: हाउ क्यूट।

0: अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please, my name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldie?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh yes! Anthony Gonsalves!
3: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर

0: जाते।
1: आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म आन मिलो सजना, सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम करते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं।

और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वो टेक्स्ट तो आपने हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ ही लिया है, लेकिन जो इससे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में टेक्स्ट और या कहें इस इबारत को बता देते हैं। तो आज की इबारत है, ए दिल सुनो मेरी एक बात मानो तुम, तय जो किया तुमने वो सच करने की ठानो तुम, कभी गर राह हो मुश्किल तो खुद को आजमाना तुम, देखा कि ये दिन रात जो वो सपने सजाना तुम, किसी को देखकर धड़को तो फिर मुस्कुराना तुम, तुम्हारा भी तो दिल होगा उसे अपना बनाना तुम, कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। तो ये है आज की इबारत जिस पर संबंधित जो भी गीत हैं इनसे इनके अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जाएंगे। हमारे साथियों ने तो बहुत सी बातें लिखकर भेजनी शुरू कर दी हैं और हमारे जो भी साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के जरिए वहां अगर आप सर्च करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और इसमें एक ब्लू टिक भी मिलेगा आपको साथ में। यहाँ आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और भी विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी पोस्ट भी आपको यहाँ नजर आएंगी, और इस सुरीला सफर की पोस्ट पर कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारी बातें लिख भेजी हैं वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करना चाहता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों ना अपने मन की कुछ काम करें, अपने दिल का कुछ काम करें, कहीं घूमने चले जाएं या बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनसे छुटकारा पा लें किसी तरह से, लेकिन हमारा दिमाग हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और बहुत सा ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता। तो आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की, और किस तरह से समझाते हैं अपने दिल को, ये सारी बातें आप हम तक भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी दिल की बात मानकर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के लिए आपके दिमाग ने साफ साफ मना किया हो। तो ये बातें हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए। तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा।

दुलारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली, उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियां,

गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली, उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियाँ, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गईं। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखाया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि सच्चे दिल की आवाज़ बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम, ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूठ कर खुद से ही मान जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, ये गाना उन्होंने बताया। और आगे लिखा कि किसी की जिंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है, गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है बाकी राज्यों की अपेक्षा, ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्यौहार आज मनाया जा रहा है, सभी को शुभकामनाएं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि इबारत की आखिरी लाइनें जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनोवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी जिंदगी में आए, बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था, पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा, हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में जरूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज्म ही लिखी, ऐ दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो, राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरी को रोशन कर लो, किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो, तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो, झुंझला कर अगर कभी दूर हो जाओ मायूस ना करो फिर से मान जाओ। वहीं हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं, देखते हैं उनकी और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट के में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नज़र आ गए हैं जो हमारी लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा, तो कुछ दिल की बातें हो जाए, दिल से बहुत उम्मीदें होती हैं इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा, एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है, और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है दिल समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए, धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं, तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो काम करके ही रहते हैं और किस तरह से करते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता, ये सब बातें आप बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपने दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफ़र जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हों हिम्मत ना हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर तेरी पुकार पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ओह एक बार फिर उबाओ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए हैं इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक थीम पर लगाए गाना रहने चाहिए, क्योंकि एक थीम रहे या एक शब्द दे दिया जाए ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी एक तरीका होता है, अपना एक माहौल होता है कह सकते हैं हम। तो इस कार्यक्रम को कुछ इसी तरह से चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे शब्दों वाला एक इबारत आप तक पहुंचा दी जाती है और आपको उनमें से शब्द चुनने होते हैं जिनमें गीत आते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती रहनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रेमी दिलों को प्रोत्साहित करती ऊर्जा स्रोत रूपी इबारत में प्रेम रस उड़ेलती सलाह भी है और सांत्वना भी। प्रेम प्रसंगों में रूठने मनाने के सुंदर संक्षिप्त चित्रण व सुलभ समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम के लिए हम श्रोतागण बेकरार हैं, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत, कह रही है कि दिल की आवाज़ सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही।

बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में है जो सीधे दिल को छू रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने, या दिल धड़कने का सबब याद आया जो दिल को छूकर निकला, दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी आ सकती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बताइए।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार। मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज। दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास। मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे और साथी

ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल की धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाए हैं, राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें, किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना, दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे, सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए, ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि आज थीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, इस टोली के आदमी हैं हम। तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं नहीं उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें, और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

0: अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहां अपना रिश्ता होता है वहां ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूट कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हों, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हों, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप, ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारे और साथी कह रही हैं कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है, और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दिल की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों की लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज़ ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा है और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी।

0: ये है बॉम्बे मेरी।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज़ में। ये हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल के वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें। लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं, उसी को यहाँ उजागर करेंगे तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत ज़रूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है। जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफ़ी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें।

कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा, इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहां है, तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे कौर साथी कहने के दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, समझ जाओ वरना पछताओगे। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। यही हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज़ में गीत सुन रही है पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी एक और साथी कह रही है कि मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज़ से मतलब ना उस चीज़ से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारे एक और साथी कह रही है कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूँगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की, काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे, सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज़।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में है वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हैं, इन्हें तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते हैं ये कार्यक्रम, गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इसलिए जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए, आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपकी लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है, वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, बताइए किसने लिखा ये गीत।

जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जाजा मेहंदी अली खां के बोल ओपी नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले घुटती चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे?

बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी माँ बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं ना कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिएं जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को ये आज़ादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राह

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं ना कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिएं जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को ये आज़ादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं। बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, और फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री मोदी अपना दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर परियोजनाओं 440 मेगावाट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, पावर परचेज एग्रीमेंट और 1,553 करोड़ 98 लाख रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला की उपस्थिति में भोपाल में 440 मेगावाट के मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। उन्होंने बताया कि मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। इस परियोजना में 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर निविदा पर प्राप्त हुई है, जो देश में न्यूनतम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले नौ सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश के आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अभी इसकी आमद नहीं हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है।

इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को मंदसौर और रतलाम में तेज बारिश हुई, जबकि रतलाम में आधा इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा गुना, श्योपुर, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन और छतरपुर सहित कई जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से हो चुकी है। अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के दल पहुंच रहे हैं। खंडवा जिले में आमा खुजरी जंगल में वन भूमि पर दोबारा हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आज सुबह प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। वन, राजस्व और पुलिस विभाग के करीब 600 अधिकारी कर्मचारी सुबह 7 बजे से 30 जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई में जुटे हैं। पन्ना पुलिस ने तत्परता निभाते हुए पवई थाना क्षेत्र से अपहृत एक कपड़ा व्यापारी के 20 वर्षीय बेटे को रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की पहचान कर ली है, जो फिलहाल फरार हैं। खरगोन जिले की बड़वाह के पास चोरल नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से बीच धारा में फंसे इंदौर के 3 युवकों को स्थानीय पुलिस ने अस्थायी रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया।

0: यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधा कृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राज्य

0: जापान से डॉक्टर अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं, ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में

0: कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
2: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
3: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हने हने हने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हने हने हने प्यार हो।

कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा, खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा, क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा। हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

0: खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हम थे मोती और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनूप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: T-A-T, cat, cat माने बिल्ली।
5: R-A-T, rat, rat माने चूहा।
4: C-A-T, cat, cat माने चूहा।

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: Pimmed, mad.

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।

0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक्मे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीरजी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, फिल्म उजाला।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे।

0: यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ यारो सूरत हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों के बाद।

0: सखी सहेली सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना।
1: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
0: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
1: जी,
0: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
1: जी।
0: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
1: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूजकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले
0: उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में।

0: और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहाँ पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, है ना नेहा
1: जी? बिल्कुल, बधाइयाँ हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
1: भाई देखिए, तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
0: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे एक आज की कसर
0: जी।
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था।
2: सुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने

0: तो
1: तो ये
0: देहा
1: जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही है।
0: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला
1: जी।
0: संदेश लिया
1: और
0: था।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए, सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो में सीखना चाहिए। शादी के बाद वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ, ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी

0: जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे, या
1: बिल्कुल
0: ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ, तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
1: मूल मंत्र
0: विवाह
1: है
0: को अच्छी तरह से
1: जी।
0: बंधन नहीं है, लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
1: अब देखो, विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझें, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए।
0: खाना तो बनाएंगे, लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
1: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए अच्छा अच्छा
0: चलो
1: है
0: फिर
1: ना।
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे, और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई, और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको, आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पीसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आँच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना।
1: हाँ
0: और जब ये अच्छे से भुन जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आँच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के
1: वो
0: साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक, जिसको फीकी लगेगी वो यही कह रही है
1: हाँ
0: क्या बना
1: तो
0: दिया।
1: आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर।

0: और लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों एक एक छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। और नमक का आपके स्वाद के अनुसार। अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए एक छोटा चम्मच, और एक छोटा चम्मच गरम मसाला तेल, आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे। सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गर्म किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दें। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़ कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है, कचौड़ियां तो बन ही चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए। और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: तो अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: Okay.

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूँ फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारे यहाँ हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज लास्ट

0: डिसऑर्डर, अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं, एसिडिटी से भी किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गेन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर पेट का दर्द जारी रहे 2 से 3 दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, 1-2 दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी ज़रूरी बात कही है, और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज़ फटने लगती है, ख़राब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पर काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज़ की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज़ की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये
0: बिल्कुल
1: गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर की हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं हैं,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
0: क्यों हो
1: अल्सर।
0: रहा है?
1: ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं,
0: जी
1: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते
0: जी
1: हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं।

0: सकते हैं,
1: जी
0: एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे क्योंकि जो एसिडी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
1: जी जी तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
0: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
1: जी जी
0: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
1: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
0: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल ख़राब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पर नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पर ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: ओके, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है कुछ?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज़्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही
0: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्स का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: लाइंस में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है, कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
1: जी जी और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज ख़ास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
0: हाँ, इसमें भी ध्यान रखते हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है, तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है, तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए, मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है, ये गाना क्वाइट फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी,
0: और काफी सुना है हमने
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर।
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेज़ाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या-क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: हाँ तो
0: दीजिए।
1: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफ़ी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते, जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है।
0: जी
1: अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है कि क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, वो बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 आवर्स हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो
0: जी
1: उसको 24 आवर pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द इसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस।

0: ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है. कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है. अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं. जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं. ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है. ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है. अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है. जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज़ नॉट रियली अ डिजीज, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली. तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत ज़रूरी है.
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज़्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी की जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियाँ, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती हैं, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड, हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज़ वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन।
0: जी
1: आई
0: जी
1: थिंक न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफ़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज़ें अगर हम कर पाए ना तो काफ़ी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये
1: हाँ,
0: क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सर दर्द हो गया है और
0: हाँ
1: एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है,
0: जी
1: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है। बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली हैं, मुझे
0: जी
1: इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि
0: जी
1: एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
0: जी जी
1: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि
0: ओके
1: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो। अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स। इसके
0: जी
1: लिए
0: जी
1: आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
0: जी हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था।

0: ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
1: कुछ
0: कहा
1: तो
0: कि
1: है, देर इज सम
0: जी हाँ
1: कोरिलेशन बिटवीन
0: ओके,
1: डाइट, नॉट
0: तो
1: ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
0: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है,
1: हाँ,
0: तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं,
0: ओके
1: बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर
0: यस
1: आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो
0: हाँ
1: माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
0: जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: या
1: बिल,
0: फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है, तो
1: हाँ।
0: ये
1: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो, और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज़ करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज़ होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अल्कोहल कर पाते हैं कि अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स, नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक
0: जी
1: एंड
0: जी
1: अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे?
0: जी
1: धूम्रपान टबैको सेम चीज़, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज़्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है, समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहाँ पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है, बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
0: जी। डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
1: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफ़ी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज़ अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी, हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज़्यादा दिखता है, जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खानी खान पान साफ नहीं होता है, तब तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज़्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, या कोई नीडल इंजरी से, या कभी कभी सेक्शुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही, ये होता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: ये
0: बिल्कुल
1: कॉमन है, वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं।
0: जी
1: लास्ट चीज़ मैं कहूँगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो
0: जी
1: ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
0: जी आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है, तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इस ये भी वजह होती है क्या?
1: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के,

0: दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है. इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है. एक सोनोग्राफी करेंगे, उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है कि नहीं.
1: जी जी. और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं. गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है.
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई. और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो IBS की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है. अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है. अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं. तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले. अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ. एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है. तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी. दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत.
1: तो इस समय IBS की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी? हाँ, या तो, कुछ नहीं?
0: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड. बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में. कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए. पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड.
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है IBS?
0: एक्चुअली IBS में कुछ नहीं आया होता, IBS इज अ सेंसिटिव थिंग. अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो, तो सारा नॉर्मल होता है. इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये.
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को. बताइए कौन सा गाना सुनवाए.
0: चले चलो, ये गाना सुनाए. चले चलो,
1: चले चलो लगान का,
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो.

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो। तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो। बार सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहे ये तेल अच्छा है, ये ले ले इसे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की ज़रूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाइज हैं, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: स्टेरॉइड भी आ रहा है
1: स्टेरॉइड्स
0: आजकल
1: भी
0: आप
1: आता
0: बता रहे
1: है।
0: हैं।
1: और ऐसी कोई चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देके फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज़ अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर

0: की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महक।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा, फिर किसी दिन बहता है।

अपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूं तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
0: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
0: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हां,
1: ले आया लकड़ी।
2: आय इतनी सी चुब्बा कहां रह गया?
3: अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूं जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहां बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हां,
1: अरे चुप भी कर, क्या करूं इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियां तोड़।

0: आता है बस।
1: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है, जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियां ऐसी मिल जाती हैं, काम तो चल जाता है ना।
0: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
1: अच्छा
0: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ
1: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
0: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ
1: अरे, अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सर, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे। ठीक
1: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
0: क्या मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
1: कुछ नहीं,
0: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
0: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
0: चुप्पा
2: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यार, है? सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश सोचा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा,

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: तो गहना लूंगी मैं, तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी मैं, तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी मैं, तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, चलो आगे चलकर देखते हैं।
4: ये देखो, ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो, चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
2: आई,
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया आई।
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ, बिल्कुल
0: सचमुच

0: इस पर तो कोयल भी रह रही है। बधवा, रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: तू समझ गई है?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
1: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान

0: कान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से, और अब आप सुनेंगे युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी।

0: स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त सौंदर्या। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में जान लेते हैं आज के दो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सेशेल्स ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए युववाणी।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: दोस्तों, हम समय समय पर आपको कई आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जो कला की दुनिया में कुछ अलग करने की चाह रखते हैं, जो कई बार आजीविका का साधन भी बनते हैं। आइए मिलें रीजन आर्टिस्ट मुस्कान पटेल से।
5: मैं एक रेजिन आर्टिस्ट हूँ, इंदौर से बिलोंग करती हूँ और बचपन से ही बेसिकली आर्ट की फील्ड में हूँ, लेकिन एज ए प्रोफेशन मैंने अपना रेजिन आर्ट को चूज किया। आजकल के बढ़ते दौर में रेजिन आर्ट का जो क्रेज है लोगों में, उसको देखते हुए मैंने रेजिन आर्ट को चूज किया है। रेजिन आर्ट एक ऐसी कला है जिसके जरिए आप ये अपनी वॉल क्लॉक्स है, डाइनिंग टेबल्स, फ्रेम्स, कुछ प्रिजर्वेशंस वगैरह, इस तरह की सभी चीजें प्रिजर्व कर सकते हैं। उसी को देखते हुए मैंने रेजिन आर्ट को अपने प्रोफेशन में चूज किया है। और जैसा कि सोशल मीडिया सबसे स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है आज, उस पर रेजिन आर्ट के आइटम्स जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। उसी चीज को देखते हुए मैंने रेजिन आर्ट को अपने प्रोफेशन में डाला। वैसे तो मैं बचपन से ही ड्राइंग करती आ रही हूँ, जब छोटी सी थी तभी से कलर के साथ, पेंसिल्स के साथ खेलने का शौक रहा ही है मेरा बचपन से। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होने लगी, वैसे वैसे कुछ बड़ी ड्राइंग्स ट्राई करना चालू किया। वो सब चीजें ट्राई करने के बाद में फिर धीरे से रेजिन आर्ट में इंटरेस्ट आया। फेस स्केचिंग वगैरह भी मैं करती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा जो एक प्रोफेशन में जाने के लिए मुझे रेजिन आर्ट सबसे ज्यादा बेटर लगा। मैंने फ्रीलांस आर्टिस्ट के प्रोफेशन में जाने का बचपन से कोई प्लान था नहीं। इन एजुकेशन मेरा MSc किया हुआ है, फाइन आर्ट्स में मेरा सिर्फ डिप्लोमा है, लेकिन जो प्रोफेशन था उससे ज्यादा बेटर मुझे आर्ट लगा, इसलिए मैंने वो BSc MSc सब छोड़कर आर्ट की फील्ड में पूरी तरीके से उतर गई।

रेजिन आर्ट से कई अनोखे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि केमिकल से तैयार किया जाता है। उसमें दो पार्ट के केमिकल्स होते हैं, उन्हें एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स, कलर्स, आपके इंटरेस्ट की चीजें डालकर उसे एक प्रॉपर टेम्परेचर पर ड्राई किया जाता है, जिसके थ्रू कुछ भी प्रोडक्ट्स किसी के अंदर भी स्टोर करके डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि अपनी शादी के कलीरे, फूल, इस तरह की अलग अलग चीजों को स्टोर करके उसकी फोटो फ्रेम्स बनाई जाती है। शादी के वरमाला वगैरह से दीवार घड़ी वगैरह बनाई जाती है, अलग अलग फ्रेम्स रहती है, डायरी, डाइनिंग टेबल, डिनर टेबल, किचन आइटम्स, काफी कोस्टर्स है, ट्रेज है, इस तरह की काफी सारी चीजें बनाई जी। सबसे मेन रोल जो है किसी के घर की भी सजावट का, वो मेन रोल होता है आर्टिस्ट का। जनरली अगर आप कुछ करेंगे, कुछ खरीदेंगे, तो वही कॉमन चीजें आपको मिलती है, लेकिन जब एक आर्टिस्ट से बनी हुई चीज आपके हाथ में आती है तो उसका एक अलग ही लुक होता है। और हाथ की कला तो हाथ की कला ही होती है, इसलिए जो आर्टिस्ट का रोल है वो आज तक कोई छीन नहीं पाया है। आज के टाइम पे अपने प्रोफेशन का एडवर्टाइजमेंट करने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया। ये एक बेस्ट सोर्स है जिनके थ्रू आप अपने जो भी आर्ट वर्क है उसका गुड एंड वेल तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्टअप किया था तब मैं अपने प्रोडक्ट्स की वीडियोस डालती थी बना बना कर, जिसके थ्रू लोगों में उसका अट्रैक्शन बढ़ा, ऑल ओवर इंडिया से मुझे उसके ऑर्डर्स आने लगे। उसके बाद में मैंने जाकर धीरे से एक ऑफलाइन सेटअप किया जिसमें मैं और भी आर्टिस्ट के साथ में जुड़ी, और कुछ इंदौर के दूसरे लोकल आर्टिस्ट के साथ में जुड़ी हूँ जो मुझे कुछ स्केचेस बनाकर प्रोवाइड करते हैं, कुछ कैरिकेचर पे वर्क करते हैं, कुछ क्ले पर वर्क करते हैं। तो मैंने अपने जो एक मतलब फिजिकल शॉप स्टार्ट की जिसमें कि सभी आर्टिस्ट को इंगेज किया, क्योंकि हर आर्टिस्ट हर तीसरे घर में कोई ना कोई एक आर्टिस्ट रहता है, लेकिन उसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ से वो अर्न कर पाए। तो उस अर्निंग का सोर्स को डेवलप करने के लिए मैंने एक स्टार्टअप किया, फिर उसमें मैं काफी आर्टिस्ट के साथ में जुड़ी, उन आर्टिस्ट को आज अच्छा वर्क भी मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप अपना एडवर्टाइजमेंट पहले सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे फिजिकली कर सकते हैं। आज मेरे साथ में 8 से 10 आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं और उनके साथ में काम करने में मजा भी काफी आता है। मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि अगर आपका किसी आर्ट की फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ ड्राइंग, स्केचिंग, रेजिन को छोड़कर भी अगर बोलूं तो आपका अगर किसी डांसिंग, सिंगिंग या किसी भी आर्ट से रिलेटेड चीज में इंटरेस्ट है, तो अपनी जो हॉबी है उसको प्रोफेशन में आप बेझिझक कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आज अपना जो एक टैलेंट है उसे लोगों को दिखाने के लिए काफी सोर्सेज आ चुके हैं, और उन सभी सोर्सेज में अर्निंग के बहुत ऑप्शंस खुल चुके हैं। पहले एक टाइम हुआ करता था जहां पर टैलेंट को छुपाया जाता था कि इस चीज से तुम क्या कमाओगे, लेकिन आज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास तरीके से अपने टैलेंट पर फोकस कीजिए, और आजकल तो इतने इंस्टीट्यूट्स हैं कि आप अगर ड्राइंग की फील्ड में है तो आपके पास फाइन आर्ट्स जैसा एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आप बिल्कुल डिटेल के साथ में उसी चीज के बारे में सीख सकते हैं। और जब उस चीज के बारे में सीखते हैं तो फॉर श्योर आपको उस चीज में काफी गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ में आपके पास किसी को टीच करने का एक बेटर ऑप्शन होता है, जैसे कि मैं खुद भी करती हूँ। मैं इसी तरीके से आपके पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाकर ऑनलाइन उनकी अपनी वेबसाइट बनाकर लॉन्च कर सकते हैं, ये एक बेटर ऑप्शन होता है। उसके अलावा आप कहीं कुछ शॉप वगैरह से कॉन्टेक्ट कर वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। अपने खुद की जब एक बोल सकते हैं, जब आप एक एक्सपर्टीज हो जाएगी आपकी उस आर्ट वर्क में, जब आप लोगों से जुड़ेंगे, कुछ लोगों से आपको जुड़ने की जरूरत है, फिर उसके बाद में जो टैलेंट की कद्र करता है, जो उस टैलेंट को अच्छे तरीके से जानता है, वो आपके पास खुद चल के आने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब आपको लोग जानने लगते हैं, आपके आर्टवर्क को देखकर पहचानने लगते हैं, उसके बाद में आपको किसी के साथ पास जाने की जरूरत नहीं होती है। लोग जो जिन्हें आर्ट की कद्र होती है वो खुद आपसे आकर

0: डिमांड करते हैं कि हमारे लिए आप प्लीज ये बना दीजिए, ऐसा हमारे लिए डिजाइन कर दीजिए। इसलिए आप आज के टाइम पे आर्ट की फील्ड में बिल्कुल बिंदास जा सकते।
1: दोस्तों ये तो थी रेजिन आर्टिस्ट मुस्कान पटेल। दोस्तों इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही महसूस हुई ना, और बारिश भी कई जगह अब तक उतनी नहीं हुई जितनी आम तौर पर हो जाती है, कहीं हुई तो कहीं अब तक दस्तक ही नहीं दी। इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ तापमान, पेड़ों का कम होना, क्योंकि पेड़ हवा को ठंडा रखते हैं और पानी के चक्र यानी कि वाटर साइकिल में भी मदद करते हैं। पेड़ों के कम होने से जमीन भी ज्यादा गर्म होती है। शहरों में ऐसी स्थिति का कारण एक ये भी है, बढ़ता कंस्ट्रक्शन। कंक्रीट दिन भर सूरज की गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है और रात तक धीरे धीरे हीट रिलीज करता है, इसलिए रात में भी गर्मी कम महसूस नहीं होती, उमस रात को भी होती है। फिर एसी ज्यादा चलते हैं तो बिजली की खपत बढ़ती है। बिजली बनाने में भी कई जगह फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस और बढ़ती हैं। इसके अलावा भी एक कारण है अल नीनो, नाम सुना है आप सभी ने। अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है। इसमें प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के कुछ हिस्सों का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। सुनने में लगता है कि इसका असर सिर्फ समुद्र तक होगा, लेकिन असल में ये दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करता है। पर जितने भी कारण हो, कुल मिलाकर ग्रीनरी रखें, पेड़ पौधे लगाएं और नेचर का ध्यान रखें। सुनते हैं दोस्तों कार्यक्रम का पहला गीत।

और कभी कभी पत्थर या ईंटों से बनी होती थी। छत भी कई जगह मिट्टी की टाइल्स या खपरेल की होती थी। आंगन होता था जहाँ हवा का आना जाना आसान रहता था। खिड़कियाँ आमने सामने होती थी जिससे क्रॉस वेंटिलेशन होती थी और घर में प्राकृतिक हवा चलती रहती थी। दोस्तों, मिट्टी और चूना कंक्रीट की तरह तुरंत गर्म नहीं होते। हमारे पुराने घर या बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी नेचर के हिसाब से थी और उन्हीं पारंपरिक और प्रकृति अनुकूल चीज़ों में एक नाम है टेराकोटा। टेराकोटा आखिर है क्या? टेराकोटा शब्द इटालियन भाषा के दो शब्दों से टेरा और कोटा से मिलकर बना है। टेरा का अर्थ है मिट्टी और कोटा का अर्थ है पकाया हुआ, यानी पकी हुई मिट्टी। लेकिन भारत में ये कोई नई कला नहीं है। हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी मिट्टी से बने बर्तन, खिलौने और मूर्तियां मिल चुकी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ टेराकोटा की परंपरा कितनी पुरानी है। अब तो चीजें पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की ज्यादा बनती है, जो नेचर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पर टेराकोटा पूरी तरह इको फ्रेंडली है। बात करेंगे टेराकोटा पर पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्रम, कुछ बातें कुछ गीत, और बातों का चक्र निरंतर रखते हैं। गीत के पहले हम जैसे बात कर रहे थे प्रकृति की, तो दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा पुराने घर जो सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी का एहसास देते थे, और वो क्यों? क्योंकि उनमें मोटी मोटी दीवारें होती थी जो मिट्टी और चूने गोबर

दोस्तों, हम बात कर रहे थे टेराकोटा की। बचपन में जो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन या किचन सेट से हम घर घर खेलते थे, उनकी जड़ भी इसी परंपरा से जुड़ी हुई है। और सिर्फ खिलौने ही नहीं, मटके, दिए, गमले, छत की खपरेल, सजावटी मूर्तियाँ और आजकल तो वॉल टाइल्स और डेकोरेटिव पैनल्स भी टेराकोटा से बनाए जा रहे हैं। अब अगर बात करें ये बनता कैसे है, तो अच्छी क्वालिटी की मिट्टी ली जाती है, उसमें से पत्थर और दूसरी चीज़ें अलग की जाती हैं, फिर पानी के साथ गूंथ कर हाथों से मनचाहा आकार दिया जाता है। जब वास्तु तैयार हो जाती है तो उसे कुछ दिन धूप में सुखाकर आखिर में भट्टी में तेज तापमान पर पकाया जाता है, तब उसमें मजबूती आ जाती है। दोस्तों, टेराकोटा सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं, इसके पीछे विज्ञान भी है। टेराकोटा में बहुत छोटे छोटे छिद्र यानी कि पोर्स होते हैं। ये हवा और नमी के प्रभाव को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इसी वजह से टेराकोटा की टाइल्स घर के अंदर का तापमान कुछ हद तक संतुलित रखने में सहायक होती हैं। इसी वजह से मिट्टी के मटके का पानी भी प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता है। कभी-कभी भविष्य की समस्याओं का हल हमारे अतीत की परंपराओं में छुपा होता है। टेराकोटा उन्हीं परंपराओं में से एक है।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे टेराकोटा की, इसलिए जब भी हम किसी स्थानीय मेले, हाट बाजार या प्रदर्शनी से टेराकोटा के दिए, गमले या कोई सजावटी वस्तु खरीदते हैं, तब हम सिर्फ एक सामान नहीं खरीद रहे होते, बल्कि एक पुरानी परंपरा और एक कारीगर की मेहनत का सम्मान भी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मिट्टी के मटके से पानी पिएं, किसी टेराकोटा के गमले में पौधा लगाएं या किसी मिट्टी के दिए की रोशनी देखें, तो एक पल के लिए उन हाथों को जरूर याद कीजिएगा जो इस मिट्टी को अपनी कला से जीवंत बना देते हैं। दोस्तों, ये तो था हमारा आज का क्रम कुछ बातें कुछ गीत। कैसा लगा आपको, हमें पत्रों और ईमेल्स के जरिए जरूर बताइएगा। वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव का। जान लेते हैं आरंभ में पूछे गए दो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तरों को। हमारा आज का पहला प्रश्न था, हाल ही में सेल्सियस ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी को कितने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं? तो इसका उत्तर है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स। यह उनका 18वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। इसी के साथ दे अनुमति आपकी दोस्त सौंदर्या को नमस्कार।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे युववाणी FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार।

आनंद बख्शी का गाना हम सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की तर्ज पे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया फिल्म अजनबी के लिए। गीतकार संगीतकार की इसी जोड़ी का एक और गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म बेताब। लता मंगेशकर के साथ शब्बीर कुमार की आवाज सुनें।

लता मंगेशकर के साथ अब आवाज सुरेश वाडकर की। संतोष आनंद का ये गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है, फिल्म प्यासा सावन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओ, आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम ने हमने आपको बारिश के कुछ गाने सुनवाए और कार्यक्रम का ये आखिरी गीत भी यही बात कहता है। 1942 अ लव स्टोरी इस फिल्म का गीत है, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में, जावेद अख्तर का गीत, राहुल देव बर्मन का संगीत।

FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी खंडवा। शाम के 7 बजने को हैं, आपको सुनवाते हैं हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सूलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है।
2: मंगल भवन मंगल हारी
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
5: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब है?

0: ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
2: और आकाशवाणी खंडवा। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओ, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
6: कूल रहो।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का किया उद्घाटन। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। यूसीसी समेत विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में अभी मॉनसून का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।

0: सिंह बंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे को यहां से बिजली मिल रही है। श्री जोशी नीमच में आयोजित ऊर्जा पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि मध्यप्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है।
2: पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश ग्रीन पावर का, हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मैं शुक्ला जी को भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हर महीने आके मुझे मिलते हैं। जो भी हमारा स्कीम है मुख्यमंत्री नाम से मुझे बोलते हैं, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा है, इसलिए हम कैबिनेट में अप्रूवल करके देते ही रहते हैं।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोलर पावर यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे सस्ती बिजली अब नीमच में मिलेगी।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही, इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। अगले 50 वर्ष में ये संबंध नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से परिभाषित होंगे। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमाइनी सरकार और सेशल्स के लोगों को धन्यवाद दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लोकभवन पहुंचकर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल को मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, UCC को लेकर मिल रहे व्यापक जन समर्थन और इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्ययोजना से भी अवगत कराया। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को हाल ही में मिले GI टैग से संबंधित किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, MSME और स्टार्टअप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों और सरकार को मिली उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। छतरपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा

बैठक आज जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने की। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयर हाउसिंग और नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। पन्ना जिले में एक बार फिर एक आदिवासी किसान परिवार की किस्मत बदली है। यहां अहिर गवां क्षेत्र के एक निजी भूमि पर संचालित खदान से इस परिवार को 11.19 कैरेट का बेशकीमती जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार को करीब 2 साल पहले भी 19.22 कैरेट का विशाल हीरा मिला था, जो नीलामी में 93 लाख रुपए में बिका था। हीरा कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मजदूर राकेश गौड़ ने इसी साल अप्रैल में पट्टा बनवाकर अपने 3 भाइयों और दारुश के साथ मिलकर खदान लगाई थी। करीब 2 महीने पहले की कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को उन्हें यह चमचमाता हीरा हाथ लगा, जिसे उन्होंने तुरंत सरकारी हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अब भी इसकी आमद नहीं हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम में तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खंडवा जिले में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुड़ी रेंज के ग्राम आमा खुजरी में 105 हेक्टेयर वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई का जायजा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम गुर्जर बर्डिया में लगभग 333 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गुर्जर बर्डिया महादेव मंदिर मार्ग, आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र और राधा कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया। जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास और आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खंडवा जिले की 7 शासकीय आईटीआई संस्थाओं में 1480 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण और वनों के संरक्षण तथा हरित क्षेत्र के विस्तार हेतु धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर पीटी यादव ने आज आयोजित टीएल बैठक में वर्षा काल में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। मैहर में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सेफ क्लिक अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
4: कूल रहो।
5: हाँ जब तक निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा ने सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन ने मिलतो है, तो आप भी सुनी लियो निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
6: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

हमारा सभी किसान भाई बहनों का साथ छे आज आपकी बहन वाणी महोदय तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहनोनी कथई कथई रिमझिम फुहार न का साथ मानसून न भी दस्तक दे दीज। बारिश का मौसम में होने वाली बीमारी न असुविधा न सी बचना का लेना हमका कुछ सावधानी न रखनु चाहिए। जैसा कि अगर घर में या आपका खेत में किसी भी प्रकार का बिजली से चलने वाला उपकरण न पानी की मोटर का खुला तार होए तो उनका पैक कराड़ी लेनु चाहिए। साथ ही आपका खेत में अगर पानी की मोटर लगेल छे न वो खुली जगह में रखेल छे तो ओखर सुरक्षित जगह या टीन का शेड का नीचे या पक्का कमरों होए वहाँ रखी देनु चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर खुला में रहेगा न पानी आ जाएगा तो खराब भी हुई सके, या अगर आप ओखा अचानक चालू करी देगा तो करंट उतरने को खतरों भी रहे। साथ ही भाई बहनोनी अभी गर्मी में हमने कूलर भी खूब चलाया न बारिश का मौसम में हमको उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। एकलण कूलर न का पानी ख निकाली न साफ करी देनु चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम में मच्छर भी न मक्खी भी ज़्यादा हुई जाए न ठहरेल पानी में ई ज़्यादा पनपज जेका से हमको मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी न भी इनका काटना सी हुई जाए। साथ ही भाई बहन नोनी घर का आसपास की खुले नाली न साफ कराड़ी देनु चाहिए न उनका ढकाड़ी देनु चाहिए। साथ ही जहाँ पर पानी रुकी न भरे रह जातो होए ऐसा गड्ढा न ख भराड़ी देनु चाहिए। साथ ही बारिश पानी का दिन न भी जब भी आप घर से बाहर जा रहा होए तो अपना साथ बरसाती छातो जरूर लेने जानू चाहिए। भाई बहन नोनी बारिश का मौसम में जहरीला कीड़ा काटा निकलने को भी डर रहे, क्योंकि बारिश में बिल बंद हुई जाए न ई हमको बाहर नजर आवज। तो जब भी आप बाहर खेत बाड़ी में जाओ तो अपना साथ टार्च जरूर लेने जानू चाहिए ताकि अंधेरा में एक उपयोग कर सका। साथ ही भाई बहन नोनी बारिश में पानी भी गंदो हो जाए जेका सी पानी सी होने वाली बीमारी न है जो टाइफाइड भी होने को खतरो रहे। एकलण पानी ख उबाली न या फिल्टर करी न पीणु चाहिए। साथ ही अपना आहार में भी बदलाव करनो जरूरी छे। हरी पत्तेदार सब्जी न कम से कम खानु चाहिए, क्योंकि इनमें कीड़ा होने को खतरो रहे। घर का बने ताज़ा भोजन करनु चाहिए न इम्यूनिटी बढ़ाने का लेना अदरक तुलसी न हल्दी को खाना में इस्तेमाल करना चाहिए। भाई बहनोनी ई तो थी आपकी न हमारी थोड़ी सी बातचीत। भाई बहनोनी अब समय छे आपसी आज को खेती किसानी से जुड़ेल प्रश्न पूछने को। तो आज को हमारो प्रश्न छे कपास फसल का अवशेष न को खाद का रूप में उपयोग करना सी खेत में कीना तत्व की पूर्ति करी जा सकज। प्रश्न एक बार अरु सुनी लो। कपास फसल का अवशेष न को खाद का रूप में उपयोग करना सी खेत में कीना तत्व की पूर्ति करी जा सकज। नहीं इन प्रश्न को उत्तर तो हम आपको जरूर बतावांगा, लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम का अंत में तब तक बने रहो हमारा साथ न कार्यक्रम को आनंद लो। भाई बहनोनी इना समय हमारा सभी किसान भाई अपना खेत न खरीफ की फसल लगावना का लेना तैयार कर ही रहा होएगा न ई भी सोच ही रहा होएगा कि इना साल उनका कौन सी फसल लगाउनु चाहिए न का बीज भी खरीदी रहा होएगा। तो भाई बहनोनी जब भी बीज खरीदो तो उन्नत बीज न को चयन करनु चाहिए। साथ ही अगर आपका घर का भी बीज लगाउनु होए तो उनका पहला उपचारित कर लेनु चाहिए, क्योंकि खरीफ का मौसम में भूमि में अधिक नमी होने का कारण मृदा जनित रोग फसल पर लगने को खतरो अधिक रहे। भाई बहनोनी उन्नत बीज न को चयन का लेना हमेशा सरकारी या भरोसेमंद एजेंसी से प्रमाणित बीज खरीदनु चाहिए। साथ ही अपना क्षेत्र की मिट्टी न जलवायु के अनुसार बीज न की किस्म न को चुनाव करनु चाहिए। कम पानी वाला क्षेत्र न का लेना सूखा प्रतिरोधी किस्म न को चुनाव करनु चाहिए।

0: भाई बहनों ने बुआई का लेना साफ स्वस्थ एक समान आकार का बीज को चुनाव करना चाहिए। साथ ही भाई बहनों ने बुआई से पहला बीज को अंकुरण परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए। न जी बीज को अंकुरण परीक्षण 80% से कम हो तो ऐसा बीज नख नहीं लेना चाहिए। साथ ही एक बात को अरु ध्यान रखना चाहिए कि बीज नम दूसरी फसल का बीज या खरपतवार का बीज मिले नहीं हुए। बुआई से पहले बीज नख उपचारित करना बहुत जरूरी है ताकि कवक न कीट न सी फसल सुरक्षित रहे। भाई बहनों ने बीज जनित बीमारी न कलना कार्बन डाइजेम 2-3 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से मिले न बीज नख उपचारित कर सकान। साथ मिट्टी का कीट नसी फसल का बचावना कलण किसान भाई इमीडा क्लोरोपेड या दूसरा अनुशंसित कीटनाशक न को प्रयोग करना चाहिए। साथ कुछ किसान भाई नमक को भी प्रयोग 10 लीटर पानी में 1.5 किलो नमक मिलाई न घोल बनाई न एम बीज नख जब बीज डाले जाए तो ऊपर तैरने वाला हल्का बीज नख हटाई देना चाहिए। न नीचे बैठे स्वस्थ बीज नख बोई का लेना इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही भाई बहनों ने जैविक उपचार में ट्राइकोडर्मा या स्यूरोडोमोनास की 5-10 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज का उपचारित करना से जड़ गलन न उकटा रोग से फसल को बचाव हो। दलहनी फसल न कलना राइजोबियम कल्चर को उपयोग करना चाहिए जेका से मिट्टी में नत्रजन को स्थिरीकरण बढ़ज। साथ बुआई का पहला किसान भाई का खेत की मिट्टी की जांच कराई न पोषक तत्व न की जांच कराई लेना चाहिए। खेत की जुताई करी न खेत का समतल करी लेना चाहिए। न जल निकास की अच्छी व्यवस्था करी लेना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण कर लेना पुरानी फसल न का अवशेष नख साफ करी देना चाहिए। न गोबर की खाद को प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारा किसान भाई इन्हीं बात न को ध्यान रखेगा तो उनका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। भाई बहनों ने अब सुना मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का अंतर्गत CMC LDP योजना की जानकारी विषय पर ई भेंटवार्ता जानकारी देहराज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का द्वारा संचालित कोर्स का परामर्शदाता मनोज चहल ने इनका सी बात करी रही बहन माधुरी सेन।
1: भाइयों बहनों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत CMCLDP योजना की जानकारी के बारे में। और इस जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा संचालित कोर्स के परामर्शदाता मनोज चहल। तो मनोज जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम की सविस्तर जानकारी लेंगे।
1: जी चहल जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इस योजना की शुरुआत कब से हुई?
2: मैं बताना चाहूँगा कि 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के द्वारा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को एक नया कोर्स संचालित करने के लिए दिया गया और उस कोर्स का नाम रखा गया मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम। इस कोर्स का उद्देश्य था कि ऐसे युवाओं को तैयार करना कि जो समाज का देश का नेतृत्व कर सके।
1: जी इस योजना का उद्देश्य क्या है?
2: इस योजना के बहुत सारे उद्देश्य हैं और समाज का सर्वांगीण विकास। इस सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो हम समाज में बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं कि किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उन युवाओं को युवतियों को महिलाओं को पुरुषों को दोबारा शिक्षा की धारा में जोड़कर अब उनके जो बचे हुए कार्य है वो पूरा करने का एक अवसर इस कोर्स के माध्यम से उनको मिलता है।
1: जी चहल जी, समतुल्य मान्यता एवं इसकी संचालन विधि क्या है?
2: कि यह जो कोर्स है मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम, यह मध्य प्रदेश की महात्मा

0: गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना के द्वारा संचालित किया जाता है
1: जी।
0: और जिस तरह से जो हमारे प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कार्य कर रही है, उसी तरह इस विश्वविद्यालय को भी UGC की मान्यता है
1: जी। मनोज जी, इस योजना के लिए न्यूनतम पात्रता कितनी होना चाहिए?
0: मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है CMCLDP मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम, इस कोर्स के अंतर्गत दो प्रोग्राम चलाए जाते हैं। पहला है BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क। इसकी जो न्यूनतम पात्रता है वो किसी भी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राएं इसको कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है हमारा MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क
1: जी।
0: इसमें मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन होना कंप्लीट जरूरी है। तो इस तरह से जिन छात्र छात्राओं महिला पुरुषों की 12वीं कंप्लीट है, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, वो MSW में BSW में एडमिशन ले सकते हैं, और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो MSW में एडमिशन ले सकते हैं
1: जी। मनोज जी, इस योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रहती है?
0: शासन के द्वारा और विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित जो आयु सीमा है वह 18 साल से बड़ा और 45 साल से छोटा व्यक्ति यदि ये कोर्स करता है तो इस कोर्स के माध्यम से वो किसी न किसी क्षेत्र में स्टेबल होकर अपना जीवन गुजारा कर सकता है। ऐसा देखा जाए तो 45 साल के ऊपर के व्यक्ति भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और वो पढ़ाई लिखाई कर अपनी डिग्री बढ़ा सकते हैं या अपना समाज में योगदान दे सकते हैं। कि न्यूनतम आयु यदि देखी जाए तो 18 से बड़ा और 45 से छोटा
1: जी। चहल जी, तो इस योजना के लिए जैसे जो आपने बताया BSW और MSW होता है, तो इसके लिए कितनी सीटें मतलब जो है रहती हैं और इसकी समय अवधि क्या रहती है कोर्स की?
0: मैं सभी को बताना चाहूँगा कि शासन के निर्देशों के अनुसार वो विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार समय समय पर मांग के अनुसार सीटों में परिवर्तन होते रहता है। तो पूरे प्रदेश में ये 52 जिलों में ये प्रोग्राम चलाया जाता है और यह प्रोग्राम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से संचालित किया जाता है और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जो ऑफिस है पूरे 52 जिलों में है। 52 जिलों के जो कलेक्टर ऑफिस है उस कलेक्टर ऑफिस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट रहता है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, उसी को ही एक नोडल एजेंसी बनाया गया है और उसी के माध्यम से ये कोर्स चलाया जाता है। तो BSW की जो सीटें है यूनिवर्सिटी ने निर्धारित की है वो 40 है और MSW की जो सीटें है यूनिवर्सिटी ने निर्धारित की है वो 50 है
1: जी। और इनकी अवधि कितनी कितनी रहती है?
0: मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हम जिस तरह से रेगुलर एजुकेशन लेते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर या कॉलेज में जाकर, तो उसकी एक अवधि होती है। यदि आपको BA, BCom और BSc कंप्लीट करना है तो वो 3 साल में ही करना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन यहाँ पर अवधि थोड़ी बड़ी है। यदि कोई BSW करना चाहता है तो वो 3 साल के साथ साथ 5 या 7 साल में भी उसको कंप्लीट कर सकता है, और यदि वो MSW करना चाहता है तो उसकी अवधि 2 वर्ष है, लेकिन किसी कारणवश वो 2 वर्ष में ये पूरा नहीं कर पाया तो वो 5 साल और 8 साल तक उसको कंप्लीट कर सकता है
1: जी। इसमें प्रवेश प्रक्रिया क्या रहती है?
0: मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 12वीं बोर्ड के रिज़ल्ट लग जाते हैं और ग्रेजुएशन के बच्चों के रिज़ल्ट लग जाते हैं, तो जून और जुलाई ये 2 माह में इसमें प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाती है
1: जी।
0: और पूरी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। विश्वविद्यालय के द्वारा

0: एक साइड ओपन कर दी जाती है, CMCLDP मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम। उस साइट में जाकर पहले अपना आईडी बनाना पड़ता है, आईडी बनाने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसकी फीस विश्वविद्यालय ने केवल 100 रुपये रखी है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ दिनों के बाद लिस्ट जारी होती है। उस लिस्ट में यदि अपना नाम हो तो अपन विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित फीस है वो फीस एक ही बार भर सकते हैं या इसको 2 बार भर सकते हैं। जिस तरह से BSW की जो फीस है पूरे साल भर की वो केवल 4,500 रुपये है, और इसको आप 2 बार भर सकते हैं, और उसी तरह MSW की जो फीस है वो केवल 6,500 रुपये है, इसको भी आप 2 बार भर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई छात्र छात्राएँ हैं, यदि वो कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, और रेगुलर यूनिवर्सिटी के पढ़ाई करने के साथ साथ वो इस कोर्स में एडमिशन लेकर इसकी भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, बहुत ही अच्छी और लाभदायक जानकारी दी आपने हमारे किसान भाइयों बहनों को। और मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि इस योजना में महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या लगते हैं?
0: जब हम BSW में एडमिशन करना चाहते हैं तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, उसी के साथ साथ हमारा आधार कार्ड, समग्र ID, जाति प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, ये हमें BSW के एडमिशन के लिए लगने वाले कागज पत्र हैं। दूसरा है हमारा MSW। यदि हम MSW करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ग्रेजुएशन की अंक सूची, आधार कार्ड, समग्र ID, जाति प्रमाण पत्र, इस तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। और इसमें जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी समय ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई TC वगैरह देना नहीं पड़ती है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
1: सर, जैसे अभी आपने बताया कि जो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो इसकी कोई अंतिम तिथि भी रहती है कि एक अंतिम तिथि के अनुसार जो है छात्र छात्राएं इस तारीख तक जो है फॉर्म भर सकते हैं?
0: हाँ, आपने अच्छा प्रश्न पूछा, तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये कोर्स के जो एडमिशन प्रोसीजर है वो जून और जुलाई माह तक की होती है, और इसकी जो आवंटित सीटें हैं जैसे BSW की 40 है, MSW की 50 है, तो ये आवंटित जो सीटें हैं वो केवल जिला लेवल पे नहीं है तो ब्लॉक लेवल पे है। यदि जैसा हमारे जो जिले हैं बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इस जिले में जिस तरह से ब्लॉक है अलग अलग, उस ब्लॉक लेवल पर ये सीटों का निर्धारण किया गया है कि बुरहानपुर जिले में 2 ब्लॉक है तो 2 ब्लॉकों में BSW की 40 सीट, MSW की 50 सीट, ये सीटें जैसे ही भर जाएगी वैसे वहाँ एडमिशन क्लोज हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन ओपन और क्लोज ये दोनों डेट दी जाती है, और दोनों डेट के अंदर ही हमें एडमिशन करना पड़ता है।
1: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर हमारे जो है छात्र छात्राएं हैं, अगर इनको कुछ परेशानी होती है तो क्या उनके लिए कोई सहायता केंद्र ऐसा होता है जहाँ पर वो अपनी परेशानियों का निराकरण कर सकें?
0: विश्वविद्यालय के द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो नोडल एजेंसी नियुक्त की गई है, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, इसके माध्यम से सभी जिलों में जो शासकीय महाविद्यालय है और उत्कृष्ट विद्यालय है ब्लॉक लेवल पे, वहाँ पर सहायता केंद्र ओपन किए गए हैं, और हर संडे, हर रविवार वहाँ पर कक्षाओं का संचालन होता है। जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनको किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है तो वो कक्षा में उपस्थित रहकर आई हुई समस्या का निराकरण करने का वहाँ पर कार्य किया जाता है।
1: जी, और अंत में आप हमारे किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं सभी से एक ही सलाह देना चाहूँगा कि किसी कारणवश यदि हमारी पढ़ाई छूट गई है और यदि हम भविष्य में और कुछ करना चाहते हैं तो हमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना के द्वारा एक अच्छा अवसर मिला हुआ है। इस

0: अवसर का उपयोग करके हम हमारी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है उसमें भी मान्यता दी गई है। हम यूपीएससी एमपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से बीए बीकॉम बीएससी ये डिग्री अलग अलग प्रकार की छात्र छात्राएं लेते हैं, उसी तरह यदि हमें समाज कार्य करना है, सोशल वर्क करना है, तो हमें बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू होना बहुत ज़रूरी है।
1: जी मनोज चहल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों बहनों को CMCLDP योजना की इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद।
2: भाई बहनों ने अभी सुनी मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का अंतर्गत CMCLDP योजना की जानकारी। विषय पर ई भेंटवार्ता जानकारी दे रहा था मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का द्वारा संचालित कोर्स का परामर्शदाता मनोज चहल न इनका सी बात करी रही थी बहन माधुरी सेन। भाई बहनों ने अब सुना जो निमाड़ी लोकगीत जेख गायो धर्मेंद्र सरमंडल न साथी न।

भाई बहनों ने अब समय छे आपसे आज को पूछा गया प्रश्न को उत्तर बताने को। तो आज को हमारो प्रश्न थो कपास फसल का अवशेष नको खाद का रूप में प्रयोग करना सी खेत में किना तत्व की पूर्ति करी जाई सकज। नए को उत्तर छे कपास फसल का अवशेष नको खाद का रूप में प्रयोग करना सी खेत में कॉपर तत्व की पूर्ति करी जाई सकज। नई ना उत्तर का साथ ज हमारा कार्यक्रम को समय भी यहाँ पूरा हो। तो आज्ञा देव आपकी बहन वाणी महोदय ख राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं महावीर सिंघल की लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक आनंद किशोर माथुर।

0: मीलों तक चले जाओ, दुकान ही दुकान,
1: और हर एक दुकान के अंदर 8-10 ग्राहक, और फिर कहीं कहीं तो क्यों में ही खड़े रहो वहाँ।
2: अजी तो आप खड़े ही रहे क्यों में या कुछ काम भी करके आए हैं? अरे ये क्या, ये दोनों थैले तो खाली हैं।
1: अरे ठहरो भाई ठहरो, मैं देता हूँ सामान, ये पड़ा, ये रहा साबुन तेल, और ये रहा मूंग की दाल, मूंग पापड़ मिर्ची, और ये सब्जियां भिंडी टमाटर।
2: उड़द की दाल लाए? इमली भी नहीं?
1: इमली
2: फिर क्या खाक लाए हो, 5 साल हो गए शादी को, अभी तक बाजार से घर गृहस्थी का सामान लाने का भी होश नहीं है।
1: अरे तो तुम चलती ना मेरे साथ,
2: मुझे मरने की फुर्सत हो तब ना, हर महीने समझा समझा कर भेजती हूँ कि बाजार से ये सामान लाना है वो लाना है, पर
1: अरे पर क्या, गलती तुम्हारी है, मैंने 1000 बार कहा कि जो भी काम मुझसे कराना हो उसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिया करो, एक पर्ची पर लिख देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता।
2: मैं कोई नया सामान तो मंगा नहीं रही हूँ, वही रोजाना का सामान है, गलती खुद करते हो और दोष मुझे देते हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी बाजार जाओ अपनी पुरानी पढ़ाई दोहरा लिया करो।
1: पढ़ाई
2: और क्या, सीधी सी बात है, आ से अरबी, आ से आलू, ई से इमली, ऊ से उड़द की दाल,
3: क से ककड़ी, ख से खरबूजा, ग से गधा, नहीं नहीं, ग से गोभी, च से चमचा, चूना,
1: वाह क्या खूब याद आया है चमचा, छ से खैर जाने दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसे जलेबी, जैसे जगमोहन, जगमोहन
4: बंदा हाजिर है। कहिए हुजूर, इस नाचीज को कैसे याद किया?
1: जगमोहन, आओ भाई बड़े मौके से आए हो। हाँ
4: हम तो परोपकारी जीव है प्यारे, कहो किस कष्ट में हो, अभी सारी पीड़ा से पिंड ना छुड़ा दूं तो मेरा नाम जगमोहन नहीं।
1: अरे बात यह है कि तुम्हारी भाभी मुझे नए सिरे से पाठ पढ़ा रही है।
4: अच्छा तो इसमें नई बात कौन सी हुई भाई?
2: देखो भैया, दरअसल बात यह है, तुम्हारे दोस्त अपनी आदत से मजबूर हैं, बाजार जाते हैं सामान लेने तो कुछ सामान ले आते हैं और कुछ नदारद कहते हैं कि भूल गया, फिर मैं इन्हें याद रखने की कोई तरकीब बताती हूँ तो तुम ही बताओ क्या गुनाह करती हूँ।
1: अरे गुनाह तो मैं करता हूँ जो तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। अच्छा अब तुम ही बताओ यार, अगर मैं कहता हूँ कि मुझसे जो भी सामान मंगवाना हो उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया करो, तो इसमें क्या गलती करता हूँ मैं?
4: भाभी वैसे बात तो ठीक कहता है मेरा दोस्त।
1: तुमसे ऐसी उम्मीद थी भाई जग्गू।
2: ठीक है जैसे तुम दोनों की मर्जी, ये भी हो जाएगा।
1: अरे तो हाथ कंगन को आरसी क्या?
4: इस हाथ लिस्ट और उस हाथ सामान,
2: तो मैंने ही कौन सी कच्ची गोलियां खेली हैं, मैंने पहले ही ब्लैक एंड व्हाइट में लिख रखा है सारा सामान, अभी लिस्ट लाती हूँ।
1: अरे मारे गए यार।
4: अरे मारे क्यों गए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अभी बाजार चलते हैं।
1: अरे मगर तुम इतनी दूर से आए हो, कुछ देर बैठते तो सही।
4: बैठेंगे बैठेंगे, देखो सुनो यहाँ से चलते हैं, पहले रेस्टोरेंट में जाकर बैठेंगे, कुछ इधर की बात होगी कुछ उधर की होगी और फिर काम की बात होगी।
2: ये दो थैले हैं और ये रुपए, और ये लो सामान की लिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में।
4: बहुत अच्छा भाभी, बस हम ये गए और ये आए। उठो राकेश।
1: चलो प्यारे।

0: अच्छा जग्गू, अच्छा अब बता इन दिनों कैसा चल रहा है?
1: ठीक ठाक है, बस वो तुम्हारी भाभी की तबीयत जरा नरम चल रही है।
0: कैसे?
1: अरे बात ये हुई यार कि पिछले दिनों मेरी साली की शादी थी, हमें जोधपुर जाना पड़ा। अब गाड़ी में आजकल कितनी भीड़ भाड़ होती है कि पूछो ही मत।
0: हाँ यार भाई, पता नहीं आखिर इसका हश्र होगा क्या।
1: और फिर शादी में खाने पीने का मामला जरा अब अपना ढीला ही रहता है यार।
0: अरे भाई किसको परवाह रहती है, लेकिन यार ससुराल की शादी की बात थी, तूने माल जरूर मारा होगा। हाँ।
1: अरे क्या खाक माल मारा होगा, सारा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया।
0: अच्छा हाँ। अच्छा हुआ भाई, आजकल चेंज की वैसे भी शॉर्टेज है।
1: यार तुझे हर वक्त मजाक सूझता रहता है।
0: अच्छा अच्छा अब बता ऐसी क्या बात हो गई थी, क्या किसी से झगड़ा वगड़ा हो गया?
1: अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यार पैसे का पैसा गया और बुद्धू के बुद्धू बने।
0: अरे सो तेरे लिए कौन सी नई बात है।
1: फिर वही बात।
0: अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बता क्या हुआ?
1: होता क्या, वही ढाक के तीन पास

0: वही फिल्मी स्टोरी।
1: लड़के का बाप कोई फिल्मी प्रोड्यूसर होगा है?
0: अरे फिल्मी नहीं, जुल्मी का वो जुल्मी। हीरो पर बैठने से पहले उसने एक परवाना ससुर साहब के हाथ में पकड़ा दिया।
1: क्या कहा, परवाना पकड़ा दिया? सुनते हैं परवाने तो मंडराया करते हैं, क्या उसने किसी परवाने को पकड़कर आपके ससुर साहब को इनायत कर दिया?
2: कैसे दो दिन के बच्चे बन रहे हो।
0: अरे परवाने से मेरा मतलब है स्लिप, कागज की स्लिप, और उसमें ये लिखा कि अगर 2 लाख रुपए उन्हें नकद इसी वक्त नहीं दिए तो वो बारात वापस ले जाएंगे।
1: क्या राइटिंग में? मेरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया?
0: हाँ जनाब, ब्लैक एंड व्हाइट में दिया। हमारा तो सारा मूड ही बिगड़ गया। सोचा था कि जोधपुर घूमेंगे, कुछ दिन ससुराल में रहेंगे, सारे पैसे तो वहां भेंट चढ़ा दिए और यहाँ आकर छुट्टी और कैंसिल करानी पड़ी।
1: हो भाई जग्गू, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है कि तेरा दिल टूट गया। लेकिन प्यारे, अब ये कॉफी का दिल भी ठंडा हो रहा है, इसे मत तोड़। हाँ ले ले कॉफी वॉफी भी। अरे सुना तूने, वो वर्मा ने शादी कर ली।
0: अच्छा, तो इसमें गुनाह क्या हो गया भैया, हर लड़का शादी करता है।
1: अरे मगर ब्लैक एंड व्हाइट में शादी की है।
0: क्या मतलब?
1: अरे मतलब वही कि अग्नि को साक्षी मानकर नहीं, वर्मा ने सिविल मैरिज की है।
0: यानी कि राकेश, अब हर बात लिखित में होने लगी, जैसे एक दूसरे को एक दूसरे की जबान में विश्वास ही नहीं रहा। कैसा समय आ गया है जबकि आदमी की जबान की, साख की कोई कीमत ही नहीं रही।
1: और एक वो जमाना था जब जबान से बेटी बेटी तक पराया हो जाया करते थे।
0: प्यारे समय ही ऐसा है, ब्लैक माने काला और व्हाइट माने सफेद, यानी काली रात और सफेद दिन। ये रात और दिन का ही तो चक्कर है जो हम सबको चक्कर दे रहा है,
1: और हम इसकी चक्की में पिस रहे हैं। भाई कबीर ने ठीक ही कहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो बाटन के बीच में साबुत बचाने को। अरे अरे अरे, पर तू उठ कैसे गया भाई, हाँ क्या देर हो रही है?
0: हाँ भैया, एक जगह जाना है। अब सुन यार, अब वो बात यह है कि 50 रुपए हो तो दे देना, कुछ काम है। अब काम नहीं बना तो वापिस कर दूंगा।
1: अरे 50 तो नहीं है, पर तू ऐसा कर इसमें से 40 रुपए ले ले।
0: ला ला, 40 दे दे। अब कोई बात नहीं, अभी 40 चलेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।

0: रुपए लेकर चलता बना। अब मैं जरा वो लिस्ट निकालूं। हैं? यहां भी नहीं है। इस जेब में देखूं, यहां भी नहीं है। शायद घर पे रह गई होगी। पहले घर चलता हूं। शीला क्या कहेगी? फिर सामान कैसे लोगा? हाँ, याद आया, पढ़ाई दोहरा लूंगा। आ से अरबी, आ से आलू। ठीक है, एक एक किलो ये दोनों ले लूंगा। अरे भैया, अरबी देना और आलू देना।
1: खिलौने वाला, खिलौने वाला, बच्चों के खिलौने ले लो बाबूजी। हर माल मिलेगा। 3 रुपया, 3 रुपया। ये इंजन काला 3 रुपया। ये गुड्डा 3 रुपया। ये खरगोश 3 रुपया। ले लो बाबूजी 3 रुपया। और लुटा दिया माल, लुटा दिया माल।
0: अब बाबूजी कहिए क्या दू? 3 रुपया इंजन काला 3 रुपया। ई से इंजन और ग से गुड्डा, ख से खरगोश। ठीक है, ठीक है, ये तीनों ले जा। अरे भैया, ये इंजन, गुड्डा और खरगोश, ये तीनों दे देना। ये ले, ये ये ये ले रुपए। हाँ, ये ठीक किया। और हाँ हाँ हाँ, ये रसगुल्ले बहुत बढ़िया हैं। और ये सेब दोनों एक एक किलो ले लेता हूँ। र से रसगुल्ला, से सेब। अब बचे 2 रुपए। ठीक है, हो गया बजट पूरा। शीला भी क्या याद रखेगी कि मैंने उसी के पढ़ाए हुए पाठ के हिसाब से सामान खरीदा है। अब घर चलता हूं। ये लो सामान।
2: अरे, बड़ी जल्दी आ गए। पर ये क्या? ये इंजन और ये खिलौने, ये सब तुम्हें लाने को किसने कहा था?
3: तुमने? मैं अपनी मर्जी से कोई सामान नहीं लाया हूँ। हाँ,
2: क्या ये इंजन, गुड्डा, ये घर गृहस्थी है या कोई नुमाइश? और ये मिठाई का पैकेट, ये सेब, ओफो, सारी तनख्वाह चाटने में ही फूंक दोगे क्या? मैं कह

0: वो आखिर तुम्हें समझ कब आएगी? ना अजवाइन लाए, ना नमक, ना हल्दी। जरा लाना तो वो लिस्ट, वो जो मैंने तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में दिया था।
1: वो यही कहीं होगी। पर प्रिये, तुम अपनी पढ़ाई याद कर लो ना।
0: क्या खाक याद कर लूं? क्या जगमोहन ने भी याद नहीं दिलाया कुछ?
2: मैं अंदर रहता हूं प्यारे।
1: अरे आओ आओ और अपने दोस्त का जनाजा देखते जाओ। सुना था गए हुए वापस नहीं आते, पर अब तो वो भी वापस आने लगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैठो बैठो, यहाँ बैठो।
2: अरे बैठने नहीं आया राकेश, मैं तो कुछ देने आया हूँ।
1: अरे

0: सुना था गए हुए वापस नहीं आते, पर अब तो वो भी वापस आने लगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैठो बैठो, यहाँ बैठो।
1: अरे बैठने नहीं आया राकेश, मैं तो कुछ देने आया हूँ।
0: अरे अरे, तो रुपए रुपए ही दोगे ना?
1: रुपए? कौन से रुपए?
0: अरे वही जो तुमने मुझसे रेस्टोरेंट में लिए थे।
1: रेस्टोरेंट में? यार देख, मजाक ठीक नहीं है।
0: देख, मजाक तो तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी 1 घंटे पहले रेस्टोरेंट में तूने मुझसे रुपए मांगे थे और मैंने दिए थे, और तूने कहा था कि काम चल जाएगा।
1: काम तो चल जाता प्यारे, मगर तुमने रुपए दिए कहाँ? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास?
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि आपने जो मुझे रुपए दिए उसकी कोई रसीद है ब्लैक एंड व्हाइट में? खुद तो घर के सामान की लिस्ट तक ब्लैक एंड व्हाइट में मांगते हो, और पैसे लेने देने के बाद यूं ही फोकट में कर लेते हो। वाह, क्या कमाल है
0: यार। एक तो तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, और ऊपर से मुझसे मजाक कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
2: आहा, अपनी याददाश्त तो ठीक नहीं, और दूसरों को कहते हो हर बात लिखित यानी ब्लैक एंड व्हाइट में लिया करो। मैंने घर के सामान की लिस्ट दी थी, वो भी न जाने कहां फेंक दी तुमने।
0: अरे तो मैं क्या करूं, मुझे याददाश्त भी तो भगवान ने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दी। अब रखो तुम घर का सामान और रखो तुम रुपए, मैं तो चला। हाँ
1: अरे अरे मेरे भाई, ऐसे कहां चल गया? अब केवल रुपयों के लिए इतनी बेरुखी? ये लो अपने रुपए।
2: अरे ये तो सामान की लिस्ट है जो मैंने नहीं दी थी।
0: पर ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई जग्गू?
1: इसलिए कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिली, तुमने रेस्टोरेंट में रुपयों के साथ मुझे ये लिस्ट भी दे दी।
0: और तूने इसे ले लिया, और रुपयों का तूने क्या किया बच्चू?
1: उसका तो मैं ये सामान ले आया जो तुम लाना भूल गए। आखिर मैं करता क्या, ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो थी।

हवा महल में आज आप सुन रहे थे महावीर सिंघल के लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक थे आनंद किशोर माथुर। ये झलकी आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश हंसी तो फंसी फिल्म से, आवाजें चिन्मयी श्रीपदा और शेखर की, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत विशाल शेखर का।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अजब प्रेम की गजब कहानी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की आवाजों में। आशीष पंडित ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

हैप्पी न्यू ईयर। अभी आपने सुलमेह श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह को सुना। संगीत विशाल शेखर का था, बोल इरशाद कामिल के। चित्रलोक कार्यक्रम में लेते हैं अब एक छोटा सा अंतराल।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। वन नाइट स्टैंड, अब सुनिए इस फिल्म का गीत मीड रॉस और अरिजीत सिंह की आवाज में। बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने, संगीत मीड रॉस का।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज

0: एट एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: Applications launch is going to play a very important role.
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने

0: स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
2: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
4: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
3: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं।

0: क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्यासा सावन फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए

0: क्यों कास्ट किया है? गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब रविंद्र जैन के गीत संगीत निर्देशन में सुनते हैं चित्त चोर फिल्म का गीत, आवाजें येसुदास और हेमलता की।

लीजिए सुनिए राजा मेहंदी अली खां का लिखा मेरा साया फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत मदन मोहन का।

लीजिए अब सुनिए राजा मेहंदी अली खां का लिखा मेरा साया फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत मदन मोहन का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज़ से।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं, और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे ख़ासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लासिक। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेमनगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें,

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया, फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो

सपनों से, तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

0: जिधर देखें उधर मस्तियां हैं, शोखियां हैं, तेरी निगाहों के ऐ सनम, जरा घबरा के जरा शर्मा के लूटते जाना, जलवे हैं तेरी निगाहों के ऐ सनम।
1: हाँ,

धधक रहा है सीने में मोहब्बत का अंगारा, कोई क्या जाने कैसे बनेगा सहारा, ये बादल आवारा इसे कौन पहचाने।

ये रुत, ये नजारे, ये मस्त निगाहें, भूलना नहीं है। ये पहली मुलाकात, ये प्यार भरी बातें, जीने के सहारे, इन्हें भूलना नहीं है।

तूफान उठाएगा ये जमाना, उठाने दो, दिल तो दौड़ता ही जाएगा अपनी मंजिल की ओर। नजरें मिली हैं तो सपनों की महफिल में शमा जलती ही रहेगी, दो दिल बढ़ते ही जाएंगे अपनी मंजिल की ओर।

सितारों का झिलमिलाना, चिरागों का जलना, दे रहा है इशारा, तुझे रोके तो कैसे। दिल पहले भी कब भरा था, आज भी प्यासा है, ये आजमाइश होती ही रहेगी, ऐ सनम तुझे रोके तो कैसे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है।